ये वो देश है, बावरों का देश है वृंदावन। यहाँ ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है। चाहे जिस भाव के जन हो, यहाँ आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं, वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं, तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लंगोटी धोते पाए गए, रथ आते पाए, क्या क्या। आज भी हमारी सबकी, हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जागीर की ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बिना हाथ में लेकर के अश्रु प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परा मंत्र है, परा विद्या, इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परा विद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कहने लाडली जू, वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, खगमृग पशु पंछी, राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अश्रु प्रवाह करती हुई राधा राधा राधा राधा ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रही। लाडली जू, मान सरोवर मांझ अरी सुनि नहाई के, राधा को जाप जपे पानी में जाई के। और हमने देखा किसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा राधा राधा ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा को साथ

0: आई गए।
1: जो हमारी स्वामी जी की कैसे प्राप्ति होती है, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज, और गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्परा प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्परा, तत्पर है श्री स्वामी जी की आज। कैसे कोई जानेगा राधा तत्व, जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं, वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लाल जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लालडी जी महाराज, प्रेम अनिर्वचनीय है, कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि को पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को, स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है।

हे लाडली जी, वो आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोछ कर पान की बीड़ी और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

वहीं स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके सैया की रचना कर निकुंज में फूल बंगला बना दी और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे हैं। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोहिके, वो बड़ी जानकार है, ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके कि प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु हैं, नृत्य गान वाद्य आदि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोहिके, और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोहिके, तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर गावहीं, राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरिके मुरली जो बजा वही, बंशी इतनी प्रेम मई है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार वधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी, वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा, ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है, लेकिन ये रूप यहां वंशी ये है, वंशी का क्षेत्र वृंदावन, सुदर्शन का द्वारिका मथुरा में, वहां भी देखा गया हूं, यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश ही नहीं, कभी ब्रज 84 कोष में कौमोद की गदा पांचजन्य शंख भगवान की दिव्य पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जो जब वो मुरली में राधा नाम गाते हैं तो जमुना गमुना ना करे वो प्रवाह बढ़ा वही, मृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुनि भावई, ऐसा बंशी का नाद कि यमुना का प्रवाह बंद हो गया, यमुना गमना न करे, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया, मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया, चंद गति मंद भई निरख छवि कान हो,

वही लाडली जू, बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंसी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंसी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को ये पक्षियों के झुंड के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनि व्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परमहंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंसी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो, वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की, बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं वैसे ही उनकी चलन चितवन, वैसे ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करते, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती पधारो लाडली जी, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जी का परिचय, हमारा लाडली जी को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी आचार्य रूपी सहचरी करती श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आ, हमारे चित्त को लाडली जी की तरफ, इसीलिए रेमन रसकन संगविन रंचना उपज, कहो कृपा उपजे कई भांति बुले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए।

कीजिए। अगर आप चलेंगे ना तो उससे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा के यहां जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि वो आपकी विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत लाडली जी, लाडली बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप। इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है। आज तक लाल जो परिचय नहीं जान पाए हमारे, आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने, दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, तैसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमिकों की, आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दुआ दिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी है, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, इनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभान किशोर। ए प्रतिपल नवीन नव किशोर, श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे गए, भगवत प्राप्ति तुम अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार, हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो तो भगवत प्राप्ति तो हमारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहां ऐसे लगे चलने की बात कि हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का, क्योंकि जैसे हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल, जेव ही ये कहा श्री जी को क्या हुआ, रोमांच हो गया, कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल, श्री जी के अश्रु चल रहे, श्री जी के कैसे तुम्हें बताए कितना वो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड, कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई हमारी प्रतिमा की सेवा कर रहा है। ये जो आप लोग भोग लगाते हैं, नाचते हैं, आरती करते हैं, निहाल हो गए महारानी जी के सामने, मैं किसी और की नहीं सुनना है, श्री जी देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, इतनी प्रेम विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया, गले का हार जैसे ऐसे सब सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार करती हैं, सखियां प्यारी जी बहुत, पलकन को जैसे अधिक पुत्रिन सोमति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है, सखियों ने संभाला, किस बात में, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, श्री जी कैसे, श्री जी

मोती जन। प्यारी जू के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं जैसे मानो मोतियों की वर्षा हो। कोई मेरे को पुकार रहा है, परम कोमल चित लाड़ी, परम। मदन टेर के बाबा का जो चरित्र आता है तो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाडली लाल के संग में आप भी कठोर हो। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं। लाडली जू नहीं रोक पाए, नजदीक जाके कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जू कठोर हो गए। उनका संग दोष चढ़ता है ना, लालजू कठोर हृदय के हैं इसलिए संग दोष से कठोर, ऐसे तो पड़ी कोमल। नहीं नहीं मैं कठोर ना है। लालजू ने कहा तुमने भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा। लालजू ऐसे, लालजू ने बाबा के नेत्र छुए, दिव्य देखा युगल से चरणों में। लाडली जी से कहा पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो, आंखें खुली तो आपको देखा और देखना नहीं, बस अब और तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी की। बड़ी करुणामय सरकार, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, तो देखो प्रेम चले भरी नयन मैन रस में, स्वामिनी जू के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रही हो ऐसे अश्रु गिरते जा रहे, और चपल चली शीघ्रता पूर्वक, ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा अपना समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को अपने स्नेह को बांटे हुए, नहीं तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है, उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है।

गजगामिनी। गजगामिनी प्रिया जो मतवाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग की मंडली से इतारे उनसे रास्ता करा। वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी ली हुई हटाती जा रही, लताएं देख रही प्रिया जो आ रही तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जू के चरणों में पावड़े बिछा रही। महारानी जू गजगामिनी जू पधार रही हंस गति से।

यानी सभी पहुंची उधर सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामी जी धारण नेत्र लाडली जी के नेत्र दो चकोर दो चंद्रमा धूवल पंकज दो सखियों ने देखा

वही नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही हैं। सी लाडली जो देख के उनकी इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। कीरत की बिटिया विथकी छवि देख के सखी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख गए। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जू बोलिए, प्यारी सीधे प्यारी जू पा रहे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो, ये जो महल रचना करते हो, कुंज की जो भोग रचना करके भोग पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं, बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है।

कि श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे हम तुम्हारी जैसी उपासिका का दर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से, तुम्हारा नाम क्या है?

क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरी इस मानसरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रहे हो। श्री लाल जी महाराज जो सहचरी बपू है उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जू है। श्यामा जू तो मेरा नाम है, ये श्यामा जू तो। और नंद गांव से आए हो, आप जानते हो नंद गांव, श्री जी कहा पर पूरे ब्रज में श्यामा जू तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जू है कौन श्याम जू है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे ऐसे ही दो देह केवल है वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती हैं, हा प्यारी जू आप कैसे रुस गई मान कर गए, तो लालजू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जू भाव में प्रीतम के हैं बुला रहे हा प्रिया, कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम हे प्यार। सखिया यही नहीं समझ पाती कि लाड़िलो के हृदय में चल क्या रहा, बड़ा एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जू के लिए, मैं आपकी हूं बस। देखो ना महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नर्क भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, जहां प्यारी जो वहां निकुंज, ये कहीं भी भेज दो, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती, वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए तो बनचंद महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंध नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए और जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जी सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तुम ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद, नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम शो, मानहु श्याम चुनी सुबनी खचिहेम सो।

आनंद को। तुम राधा नाम जपक, राधा रूप उपासक, ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लोगो, लाडली जी ने अपने हृदय से लगा। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है, क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है। जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल, कोई मशले, ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों, और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता, दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं, ये तो प्रीतम है, ये प्रीतम ही हम समझ गई, इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते हैं।

0: इस वक्त आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहां पे आ जाता है ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हर्ट जाता है। और अगर जिस चीज में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, इस यहाँ पे जा रहे हैं तो हम।
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो, क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो?
3: सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा, आप में से कोई बताएगा, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर।
1: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है?
4: जी सर, फिट जी में सर 6-7 ले लेते।
1: नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती है।
4: यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की, एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की? तो मतलब 2 साल की हो गई 5-6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा?
4: यस सर।
1: तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है?
3: पैसा लगेगा।
1: कितना पैसा लगता है 4 साल का, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो, तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने?
3: यस सर, यस सर, देखा।
1: अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50-60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
3: 9-10 years।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा।
3: yes.
1: और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा।
3: इंटरेस्ट भी देना है क्या?
1: इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।
5: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है।
1: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है? आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है, जवाब दो।
6: सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हम पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला।
1: तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी,
6: लेनी पड़ जाएगी,
1: करनी पड़ेगी, इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए?
6: हमारा ही हुआ।
1: आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई। तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने एआई के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि एआई का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
5: सर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का, तब मैं यूट्यूब ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने। वहां पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहां पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
1: अभी आपकी एज कितनी है?
5: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
1: 16 साल?
5: यस सर।
1: तो आपके घर वाले खुश है?
5: बिल्कुल खुश होंगे सर, 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
1: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। जो आप कर रहे हो वो सही है।
5: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया, बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है। मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे, तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर?
1: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर 1 लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से। आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे, प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी।
5: Sure,
1: तो एक सोल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर, अब ये सोल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है।
6: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही 1-2 हजार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें
1: वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होती है।
6: हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस एक साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज की। हाँ, फ्रॉड है।
1: आपने कभी ऐसा ट्राई किया?
6: हाँ, मैंने किया है।
1: आपने कितने पैसे दिए थे?
6: मैंने दिए थे 500 रुपए। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो। मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने फोर्थ डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कॉन्टेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसे हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
1: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है, इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हो, AI की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर वन, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर है इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक आईटी कंपनी है और वहां पर 1,00,000 लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है, मशीन्स का जमाना आने वाला है, और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, और वो इंसान कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा? जो भी कुछ नया हो रहा है AI की दुनिया में, वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो AI एप्लीकेशंस है उनमें, और डेली नई नई ऐप्स आ रही है, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडैप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो। अगर ये कर सकते हो, यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो, तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में। अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम? कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा। कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ, अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो, अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं? जॉब की भी तैयारी करनी है, तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। एजुकेशन मतलब क्या? कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो। आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में, और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे। इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पे सर्वाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है। तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं। और पहले मैं यूट्यूब पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गूगल पे और यूट्यूब पे। क्योंकि अगर गूगल पे ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूट्यूब पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे। लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ pictori.ai, जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे। फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू AI? अब मुझे उसके लिए कॉन्टेंट चाहिएगा। कॉन्टेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा, ChatGPT पे जाकर लिख दूंगा What is a mutual fund? What are the benefits of investing in a mutual fund? तो ChatGPT पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा। उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जा करके मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में, वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है, वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो एआई वॉइसेस हैं, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें एआई की वॉइस है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जा करके जो यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले एक साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया 10 दिन किया रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में 2-4 दिन को समझ नहीं आया, बेकार है छोड़ दो, ऐसे नहीं करते ना। 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है, तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो एक साल में मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर दी, 365 × 10 यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1-2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो, आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं। क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस है इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपका वो 1,00,000 रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है एआई जनरेटेड साउंड्स को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट चैट जीपीटी से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कॉन्टेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है, हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछे कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो पास्ट में रेलेवेंट थे फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे। लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: इमोशनल डिपेंडेंस वर्सेस इमोशनल इंडिपेंडेंसी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे रिलेशनशिप डिसीजंस और मेंटल पीस को डीपली अफेक्ट करता है। कब किसी का सपोर्ट जरूरत बन जाता है और कब वो इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल जाता है, आज हम इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बी के सुधा जी, जो कि एक साइको न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और इनका इस फील्ड में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बी के प्रिया जी। वेलकम मैम।
1: शांति, थैंक यू,
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओके प्रिया जी, आज के समय में हम इमोशनल सपोर्ट के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं
1: जी।
0: क्या ये नेचुरल है या कहीं ना कहीं हम अपनी इनर पावर भूल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: नेचुरल किसी के ऊपर डिपेंड होना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी का डिपेंडेंसी आप एनिमल्स में भी अगर आप देखते हो तो कोई भी किसी पर भी इस तरीके से इमोशनली डिपेंड नहीं होता है
0: जी।
1: ऑल आर स्ट्रेंथ
0: जी,
1: और हैविंग देयर ओन स्ट्रेंथ। तो इंसानों को भी परमात्मा ने, हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे जितनी जो इमोशनली फिजिकली मेंटली और फाइनेंशियली सोशली हम जितने स्ट्रांग रहे हैं उतना कोई भी इस पूरी कायनात में नहीं रहा है
0: जी।
1: तो आज अगर हम डिपेंड हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा कि हम अंदर से इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं
0: जी।
1: इनफैक्ट बिल्कुल ही जीरो होते चले जा रहे हैं, जो आज का हम सर्कमस्टांसेस या जो भी हम देखते हैं हालात, खास जो यंगस्टर्स हैं जिनको हम जेंजी कहते हैं, स्पेशली हमने उनमें देखा है कि उनको बहुत ही ज्यादा इमोशनली वो वीक है
0: जी।
1: वो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं।
0: हाँ जी।
1: कोई भी बात होती है तो वो पहले, सबसे पहले अपनी ईगो लेवल को आगे ले आते हैं, जो कि उनको नहीं पता चलता, दे डोंट फील इट एज अ ईगो, लेकिन उनको बस हर्ट हो जाता है। और ये बहुत बड़ा एक सत्य है कि हर्टिंग इज द मेन एलिमेंट ऑफ ईगो ओनली।
0: एग्जैक्टली।
1: अगर मुझे चोट लग रही है अंदर, तो वो ईगो एक सबसे बड़ा पहला कारण होता है
0: जी।
1: किसी ने मजाक किया, मुझे वो बुरा लग गया, मैंने भी उसके साथ ऐसा मजाक कर दिया ताकि उसको बुरा लगे, तो मैं क्या कर रही हूँ, बदला ले रही हूँ
0: जी।
1: तो ये नेचर मेरा बढ़ता चला जा रहा है कि मुझे चोट लगी है तो आपको भी मैं एहसास दिलाऊं कि चोट क्या होता है।
0: बिल्कुल।
1: एक है कि सामने वाला व्यक्ति ही एक तरह डंब है तो हम उसे एहसास दिला रहे हैं, लेकिन एक है कि मेरे अंदर सहन करने की क्षमता खत्म है, मेरे अंदर उसको समाने की क्षमता खत्म है, तो मैं उसको एहसास दिला रही हूँ
0: जी।
1: तो यानी मेरे अंदर कमी आ रही है तभी मैं बाहर रिएक्ट कर रही हूँ या बाहर डिपेंड हो रही हूँ
0: जी।
1: तो आज मेरी डिपेंडेंसी हर पॉइंट पे आती है, हर पॉइंट पे। अगर मैं हंस रही हूँ तो डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने आप से खुश रहना भूल चुकी हूँ।
0: बिल्कुल।
1: आज अगर हम चार लोग बिठाते हैं हॉल में और उन्हें कहें कि चुप रहना है, तो वो चुप रह कर के भी चुप नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर खलबली है
0: जी।
1: अगर आपको भी दो मिनट हम कहीं बिठाते हैं, कहीं कोई इंसान को बिठाते हैं और उन्हें कहें कि बस आपको खाली बैठना है,
0: बिल्कुल
1: वो नहीं बैठ सकते। उन्हें अगर मोबाइल दे दें तो वो पूरे दिन बैठ सकते हैं। इसका मतलब एक इंसान अपने से बात करने में आज असमर्थ है, तभी तो वो अपने साथ नहीं बैठना चाह रहा। खाली बैठना यानी किसके साथ बैठे हो आप
0: जी?
1: आप अपने साथ बैठे हो, लेकिन आज कोई इंसान इस रीति से खाली नहीं होना चाहता
0: जी।
1: या उन्हें कोई नेचर में लेकर जाए, एनिमल्स के बीच ले जाए, लाफ्टर चैलेंज में ले जाए, या किसी गेम में ले जाए, मोबाइल दे दे, लोगों के बीच हो, पार्टी हो, लेकिन खाली नहीं बैठ सकते। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं अपनी अंदर की पावर को खोता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को ही नहीं जानता हूँ। और जब मैं अपने आप के बारे में अध्ययन शुरू करूंगा, अपने आप को टाइम दूंगा, अपने आप से बात करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरा ये इमोशनल जो पावर है, स्ट्रेंथ है, ये बढ़ना स्टार्ट होता है।
0: बिल्कुल सही बात।
1: और जब मैं अंदर से भरपूर होऊंगा तो मेरी बाहर की जो डिपेंडेंसी है वो नेचुरली एंड ऑब्वियसली कम होती जाएगी। और एक दिन लोगों को मैं साथ दे पाऊंगा, सहारा दे पाऊंगा, बजाय उनके ऊपर डिपेंड होने के।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके सुधा जी और बीके प्रिया जी। मेरा अगला सवाल सुधा जी आपसे है कि बीके के पर्सपेक्टिव से इमोशनल डिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
1: जैसे ये शब्द आया है इमोशनल डिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस, तो पहले हम इमोशन को अगर समझ लें तो हमें क्लियर होगा। एक्चुअली इमोशंस में वो एनर्जी होती है जो हमें मोशन में लाती है।
0: बिल्कुल,
1: हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो अगर उसमें जब तक हम इमोशन नहीं फील करते हम नहीं करते। हमें जैसे पेरेंट्स कहते हैं कर लो, लेकिन जब तक हम अंदर से दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें करना चाहिए, तब तक हम अपनी पूरी ताकत उसके अंदर नहीं लगाते। अब किसी भी कार्य के लिए हम जो ऊर्जा लगा रहे हैं उसे एक्चुअली इमोशन कहते हैं, लेकिन लोगों ने इमोशन को ना लव से कहीं जोड़ दिया है, प्रेम से जोड़ दिया। वो सोचते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी इंसान के प्रति अगर डिपेंडेंसी है तो इमोशनल डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी केवल व्यक्ति के प्रति ही नहीं होती, किसी भी चीज़ के लिए। आजकल जैसे बताया सिस्टर प्रिया ने कि फोन के प्रति डिपेंडेंट है, किसी को ये है कि मुझे उससे अच्छी कार ही ले दी और वो इतना ज्यादा जुनून में आ चुका है कि उसे उससे ले उस कार के प्रति इतना इमोशन है। तो हम इमोशनली डिपेंड हैं जब हम ये चाहते हैं कि बाहर से कोई चीज मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, और हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं जो हम बाहर से किसी भी प्रतिक्रिया के बिना ही खुश हैं। कोई हमारी तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा है, हम अपने में इतना सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हमें जरूरत नहीं है। तो वो जो एनर्जी इन मोशन है वो हमें बाहर की ओर लेके जा रही है, जबकि उसे अंदर से हमें फुलफिल करना था और हमने ही एक्चुअली उसे बाहर जाने दिया है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को हमने ना बाहर से जोड़ लिया है। दूसरे हमें तारीफ कर दे तो हम खुश हैं, वरना हम नहीं है। तो इमोशनल डिपेंडेंसी तब खत्म हो सकती है जब अपने आप को हम अच्छे से जान पाएंगे। अपने आप को जानने का मतलब अपनी ऊर्जा को हम बाहर बहने से रोक

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ये है कि बहुत बार हम इमोशनल डिपेंडेंस को प्यार समझ लेते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि ये प्यार है या ये अटैचमेंट है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे पहले भी कहा था कि हम इमोशनली किसी पर डिपेंड होते हैं तो उसे हम प्यार समझ लेते हैं।
0: जी,
1: प्रश्न पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, बहुत अच्छा चुना है आपने। जब हम किसी व्यक्ति को ये महसूस करते हैं कि उसके बिना हम नहीं रह सकते, मैं फिर से कह रही हूँ केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वस्तु विशेष के लिए भी है, अगर वो चीज़ सामने से हट जाती है और हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो हम डिपेंड थे। उसके हिल जाने के बाद भी अगर हम अंदर से अपने आप को वीक फील नहीं कर रहे तो हम डिपेंड नहीं है। तो प्यार वास्तव में ना देने की चीज़ है। लव इज द ओनली डोनर थिंग, वो देने वाली ही चीज़ है, लेकिन लोगों ने उसे रिसीविंग बना लिया है। हर कोई प्यार का भिखारी है, तुम मुझे मुझसे प्यार से बोलो, तुम मुझसे प्यार से चलो, बाहर से मांगा जा रहा है। जबकि कुदरत ने ये बाई डिफॉल्ट हमें ना हमें भर कर भेजा हुआ था, हम अपने सत्य को भूल गए, इस वजह से हम बाहर से मांग रहे हैं। तो इमोशनल डिपेंडेंसी को जो प्यार समझ लेते हैं ये बिल्कुल ही गलत है। इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को पहचान कर उनके बल पर किसी के प्यार को, बल्कि मैं तो कहूँगी मांगे नहीं देने में विश्वास करें।
0: बिल्कुल प्रिया जी, आप क्या कहेंगी?
2: जी बिल्कुल, जैसा सुधा जी ने कहा आई एग्री विद हर, लेकिन और भी जो बातें हैं कि जैसे प्यार जहाँ है वहाँ हम बांधते नहीं है, जबकि अटैचमेंट में बंधते भी हैं और उससे ज्यादा कहीं बांधते भी हैं।
0: बिल्कुल,
2: और प्यार में एक खुल्लम खुल्ला है, खुल्लम खुल्ला माना ऐसा कोई बंधन नहीं फील होता, वहाँ ग्रोथ फील होती है कि मैं भी बढ़ रही हूँ और सामने वाला भी बढ़ रहा है।
0: जी,
2: जबकि अटैचमेंट में बंधन है, कहीं ना कहीं वो चीज एक ईगो का भी बीच में रास्ता आ जाता है, वो ढूंढता है किसी और के साथ तो कहीं वो व्यक्ति ना जुड़ गया हो, या अगर किसी चीज से प्यार है तो ये चीज कहीं और किसी के पास ना चली जाए। अगर मोबाइल से बहुत अटैचमेंट है तो उसे कोई हाथ लगा ले तो हमें दिक्कत है।
0: जी,
2: तरह से ये क्लियर हो जाता है कि प्यार है या अटैचमेंट है। मैं किसी व्यक्ति से अटैच्ड हूँ तो वो अगर मेरे से ज्यादा किसी और को समय देता है तो मुझे क्लियर हो सकता है कि ये अटैचमेंट है, कि मुझे दिक्कत हो रही है। फिर जहाँ प्यार होता है, जैसे मैंने कहा, वहाँ ग्रोथ है, वहाँ कनेक्टिविटी रहती है, वहाँ बराबरी रहती है। और जबकि अटैचमेंट में हमेशा ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ बजाय आपके, मैं आपकी ज्यादा केयर करती हूँ बजाय आपके, मैं आपके लिए ज्यादा करती हूँ बजाय आपके, जबकि प्यार में ये सब चीजें नहीं होती है। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसको कैलकुलेट करके ऑलवेज नहीं देती है, जबकि वहां पर अगर एक दोस्ताना बिहेवियर में ये चीज आती है तो वो दोस्ती फिर एंड के कगार पे पहुंच जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है।
2: तो अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं अटैच्ड हूँ, और अगर मैं कैलकुलेशन में नहीं हूँ तो ये प्यार है।
0: जी बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
0: बसंती इनके

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। प्रिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कैसे हम अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग बना लें कि हम किसी पर डिपेंड ना फील करें।
1: इसके लिए जैसे कि पहले ही प्रश्न में था कि पहले मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग अगर बनाना है तो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी खुद का स्वॉट एनालिसिस कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो हमारे थ्रेट्स क्या है। ये सारी चीजें जब मैं अपनी कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ
0: जी।
1: और अगर मुझे अपने आप को वाकई में आगे बढ़ाना है तो मुझे अपने को टाइम देना है और अपने को देखना है। अगर मुझे कोई उंगली उठाकर कह देता है कि आप इसमें वीक हैं
0: जी
1: और मैं रिएक्ट कर देती हूँ तो इसका मतलब मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाना चाह रही, सिर्फ बचाना चाह रही
0: जी।
1: और वाकई मुझे अपने आप को बचाना नहीं है, मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि लोगों के छोटे पत्थरों से मुझे कोई फर्क ना पड़े।
0: क्या बात है,
1: मेरे किले पे उनके पत्थरों से मुझे क्या फर्क पड़ सकता है अगर मैंने अपना किला बनाया है।
0: सही बात है।
1: तो इसलिए किला बनाए, किला बनाने के लिए अपने आप को इंटरनली मजबूत करना होगा, जिसके लिए मेडिटेशन कैन बी अ वे टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ। कि अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी इंटरनल जो पावर्स है, जो हमें दिखती भी नहीं है पर है, तो हम उनको जान भी पाते हैं, पहचान पाते हैं और उनको इंक्रीज कर पाते हैं।

0: बिल्कुल।
1: फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास प्यार है
0: जी,
1: हम एक दूसरे को देखकर शुरू में नफरत किसी से भी नहीं करते
0: जी।
1: हम पहला जो हमारा नजर जाती है वो सबके लिए ही प्यार की, रहम की भावना की जाती है, लेकिन जब उसके अंदर की बातें जानते हैं तो हम चेंज हो जाते हैं।
0: सही बात है।
1: लेकिन मेरे लेवल, मेरे अंदर वो प्यार स्नेह जो है वो किस लेवल पे है, कितना परसेंटेज है मुझे बढ़ाने की जरूरत है और कहाँ मुझे कम करने की जरूरत है, उस चीज को जानना, उस चीज की रिसर्च करना ही अपने आप को जानता है। तो जब हम इस चीज को डिग करते हैं, अपने आप की पूरी चीजों को समझ पाते हैं, तो हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन हम जब करते हैं तो मुझे रियलाइज होता है कि वेयर आई वॉज रॉन्ग एंड वेयर आई वॉज राइट। तो मुझे जहाँ रॉन्ग है मुझे अपने को चेंज करना है, और उस चेंजिंग पीरियड में अगर मुझे कोई पॉइंट आउट कर देता है तो मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी किला बना रही हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो अपना किला बनाएं और अपने किले को इतना शानदार बनाएं कि लोगों के बड़े पत्थरों से भी आपको कोई फर्क ना पड़े, तो आप सुरक्षित हैं। और उस पल पे जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुंचे होंगे, यानी आपका किला बिल्कुल बन चुका होगा, तब आपको लोगों की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। सुधा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाइक लेट रिप्लाई देना, वो रूड बात कर रहा है या वो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसको स्पिरिचुअली कैसे हैंडल कर सकते हैं?
1: एक्चुअली जैसे जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट आता है इमोशनल हेल्थ
0: जी।
1: तो अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो हम सीधी तरह समझ सकते हैं कि वो इमोशनली बीमार है
0: जी।
1: और जब किसी चीज में, जैसे कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से ये बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होती है, तो सेल्फ लव की कमी से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। हम अपने को अपने प्रति प्रेम को नहीं समझते हैं, स्वयं को हम अपनी इतने ऊंचे नजरिए से नहीं देखते हैं, नहीं मान के वैसा चलते हैं, बस दूसरे हमें कैसे आंकते हैं उससे ही अपने आप को जज करते हैं। तो जब हमारी आंखें बाहर से हटकर अपने प्रति आ जाती हैं, हम अपने सेल्फ लव को बढ़ाते हैं, हम डिपेंडेंसी को खत्म करते जाते हैं, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं
0: जी।
1: अब लोग डिस्टर्ब हैं बाहर से, भाई मेरी बात का अभी के अभी ही जवाब दो, मैं जो चाह रही हूँ वैसा का वैसा ही करो, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको अपने खुद से प्यार तब होगा जब आप दूसरों को कंट्रोल करोगे। प्रेम कंट्रोल नहीं सिखाता, और ये जो नाराजगी है वो इसीलिए कि अपने आप से एक सवाल है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो अगर कंट्रोल बाहर कर रहे हैं तो निश्चित ये सारे लक्षण आएंगे। हमें कंट्रोल अपने पर करना है, अपनी भावनाओं पर करना है कि वो बाहर न ढूंढे, वो अपने जो मजबूती है उसको अंदर से ही पैदा करें। तो जब ये बीमारी जो सेल्फ लव की है अपने को हम भरपूर करते जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे जो लक्षण आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया जी और बीके सुधा जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि क्या इमोशनल डिपेंडेंसी एक हैबिट बन जाती है जो हमें कंट्रोल करने लगती है और हमें इस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं होता, तो इस पे आप दोनों क्या कहेंगे?
1: आपका प्रश्न ही जवाब है और आपने जो कहा ये सत्य है, आज के समय में बिल्कुल यही देखा जा रहा है
0: जी।
1: और मैं आपको बताऊं, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो लोग इतने ज़्यादा ड्रेन हो चुके होंगे इस ऊर्जा से कि हम कहेंगे कि वो ज़माना कहाँ चला गया जब हम ये कहते थे कि इंसानों में इतना प्यार था कि एक जगह पर शेर और गाय भी अगर इकट्ठे हो जाएं हमारी ऊर्जा के प्रभाव से वो भी प्यार से रहते थे
0: जी।
1: वो चीज़ खत्म हो, वैसे भी खत्म होती जा रही है। अब तो ये जैसे कहते हैं ना कि घर घर में ही झगड़े होते चले जा रहे हैं, वो कारण उसका कहीं ना कहीं यही है। तो इसका अगर आप पूछें कि इसका हल क्या है, तो हम अपने अनुभव से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जितना आप अपने प्रति प्रेम को बढ़ाएंगे, क्योंकि एक लाइन कही जाती है इमोशंस हाइजैक्स इंटेलेक्ट।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, और वो स्वस्थ होने के लिए द ओनली वे जो हम समझते हैं वो अपनी अवेयरनेस है, जिसमें प्रेम बाय डिफॉल्ट शामिल है। प्रेम के बिना इस दुनिया में किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। तो जैसे जैसे आप स्वयं से जुड़ेंगे आपका प्रेम निकलेगा, सोल की जो रियल लाइट है, लव इज़ द लाइट ऑफ सोल। तो अगर हम अपनी लाइट में रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें अट्रैक्ट होंगी हमारी ओर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आप क्या कहेंगे?
2: जैसे कि वर्ड है डिपेंडेंस, यानी आदि या मैं निर्भर हूँ। तो जब मैं किसी चीज के ऊपर आदि हो जाती हूँ तो आदि वर्ड ही तब लगता है जब आदत बन गई है
0: जी।
2: और जब ये अगर आदत बन गई है तो ये वर्ड अपने आप में बहुत नेगेटिव है, डिपेंडेंस
0: जी।
2: तो जब हम डिपेंडेंट थे इस, चाहे वो किसी भी रूप में, तो वो चीज किसी को भी नहीं अच्छी लगती।
0: बिल्कुल।
2: और अगर ये आदत बन जाती है तो वाकई में एक ऐसा स्टेज आता है कि हमें पता ही नहीं चलता और ये चीजें होने लग जाती है, जिसको फिर आज के डेट में लोगों ने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वर्ड दिया है। ये उसी का एक रूप है
0: जी,
2: कि मैं डिपेंड हो गया और वो चीज अब मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम का नाम दे दिया है स्ट्रेस। इसलिए इस चीज को पहचाने, डिपेंडेंसी इज ऑलवेज रॉन्ग। Dependency on God is always right. Dependency on anybody is always wrong. इसलिए जैसे कि कहा कि आपकी मति मारी जाती है अगर आप डिपेंड होते हैं
0: जी।
2: तो इसलिए इस डिपेंडेंसी को आप जितनी जल्दी पहचानेंगे और इससे बाहर निकल आएंगे तो आप फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब जा चुका है। इसलिए कम आउट ऑफ दिस, सॉरी, इससे बाहर आ जाइए, कम आउट ऑफ दिस और अपने आप को हील करें। और खुद पे डिपेंड होना या इंडिपेंडेंट वर्ड जो लगा है उस पे, इंडिपेंडेंट का मतलब ही है आई एम डिपेंडेंट, कि मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ
0: जी।
2: और अपने ऊपर डिपेंडेंट होना यानी परमात्मा के साथ जुड़ना, और वो सबसे बढ़िया है।
0: बिल्कुल सही बात है। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुधा जी आप बताइए।
1: हमारे बड़ों ने एक दोहा कहा, आम पब्लिक ने बहुत सुना होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अगर आप प्रेम के सत्य स्वरूप को पढ़ेंगे तो लव इज अ डिवाइन एनर्जी। ये वो नहीं है जो आजकल हम सुन रहे हैं कि दो लोगों के बीच में लाके उसे सड़ा दिया गया है। ये इतनी दिव्य ऊर्जा है कि कण कण उस प्रकाश से भरा हुआ है
0: जी।
2: और मेरा मानना ये है कि आज का इंसान इतना डेवलप्ड है वो मेंटली, फिजिकली, हर तरह से डेवलप्ड है, लेकिन एक और जो डी डिपेंडेंसी आ गई है उस चीज को हमें अब खत्म करने की आवश्यकता है। हमें डिपेंड नहीं होना है, हमें साथ चलना है
0: जी।
2: हमें सबको साथ लेकर चलना है। ये भावना अगर आ जाएगी तो ना सिर्फ मैं, मेरा घर, मेरा समाज, मेरा देश, इनफैक्ट पूरा विश्व जो है वो उन्नति करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच आप दोनों का यहाँ पे आने के लिए।
2: ओम शांति। थैंक यू,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
3: आज की डिस्कशन से एक बात समझ आती है, इमोशनली कनेक्टेड रहना जरूरी है लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट हो जाना नहीं। जब हम इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं तो रिलेशनशिप भी ज्यादा हेल्दी और बैलेंस्ड बनते हैं। डॉक्टर बी के सुधा जी और बी के प्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वैल्यूएबल कन्वर्सेशन के लिए। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे नया नजरिया, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

स्टार्स, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

असलियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: मैं लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी में।

चक्कर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा
1: है। अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6। और कुछ हटके सीरीज में जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीकेंड लेकर के आ जाती हूँ कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपके दिल को एकदम छू कर चली जाती है। तो आज भी हमारी कुछ हटके सीरीज में एक नई कहानी जुड़ चुकी है और वो कहानी ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो हर घर का कनेक्शन है। एक छोटे से शहर में एक ऐसा आदमी आता है जिसे ना गांव पसंद थे, ना दूध में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसे अंदाजा था कि आगे चलकर पूरा इंडिया उसे लेजेंड बोलने वाला है। अब इमेजिन करो, आपकी लाइफ फुल स्टोर चल रही है, आपकी डिग्री, अच्छी नौकरी, फॉरेन एक्सपोजर, क्लासी लाइफस्टाइल, और अचानक आपको भेज दिया जाता है एक ऐसे गांव में जहां बिजली पानी कुछ भी नहीं है और जहां के लोग आपको जानते तक नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस एक दिन काटते हैं, सैलरी लेते हैं और निकल जाते हैं। पर ये जो इंसान उस गांव में आए, उन्होंने उस गांव को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी की तरह देखा। वो देख रहे थे कि किसान जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन असली पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज कमा रही हैं। और वहाँ उनके दिमाग में एक बहुत ही डेंजरस आइडिया आया कि अगर मेहनत किसान कर रहे हैं तो भाई फायदा भी किसान को ही होना चाहिए। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने इंडिया का फ्यूचर बदल दिया। ये कहानी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। आप सभी ने बचपन से लेकर साइंस की बुक में इनका नाम जरूर सुना होगा पर इनकी कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने दूध को सिर्फ ड्रिंक नहीं रहने दिया, उसे मोमेंट बना दिया था। और मजे की बात पता है क्या है कि उन्होंने कभी खुद को हीरो की तरह प्रेजेंट नहीं किया, ना एक फेक मोटिवेशन लेकर के कभी चले, ना लाउड स्पीचेस दी कभी, बस काम देखा और विजन क्लियर किया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़े। कहते हैं ना कि कुछ लोग कमरे में आते हैं वो आवाज करते हैं और कुछ लोग आते हैं तो हिस्ट्री क्रिएट कर जाते हैं। वाह वाह वाह वाह। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन उन्हीं लोगों में से थे। आज हर घर में अमूल है, हर किचन में दूध है, लेकिन उसके पीछे कितनी स्मार्टनेस, कितनी प्लानिंग और कितना विजन था उसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। और वही कहानी आज मैं लेकर के आ गई हूँ। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक इंसान की स्टोरी नहीं है, ये उस इंडिया की कहानी है जो क्वार्टली दुनिया को सरप्राइज कर देता है। तो कहानी में बने रहिए, कहीं भी मत जाइए और कहानी में वापस आऊंगी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। और तब तक एंजॉय करिए इन प्यारे प्यारे गानों को।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और आज कुछ हटके सीरीज में कहानी चल रही है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। तो अब स्टोरी शुरू होती है गुजरात के आनंद शहर से। आज आनंद सुनते ही

कुरियन के साथ में भी किसानों ने और वहाँ के गांव के लोगों ने उन पर स्टार्टिंग में तो विश्वास नहीं किया, पर धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि ये इंसान हमारे लिए कुछ करना चाहता है, तब उन सभी ने मिलकर इनका साथ दिया और फिर जन्म हुआ अमूल का। हाँ, वही अमूल जो हर घर में है। लेकिन उस समय अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, वो किसानों की उम्मीद था। डॉक्टर कुरियन गांव-गांव जाते, लोगों से बात करते, उनकी प्रॉब्लम सुनते और उन्हें फील करवाते कि तुम कमजोर नहीं हो। और शायद यही रीजन था कि लोग उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे। उन्होंने किसानों को चैरिटी नहीं दी, उन्होंने उन्हें ओनरशिप दी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा बिजनेस है और तुम्हारा फ्यूचर भी। और ऑनेस्टली यहीं से इंडिया का पूरा गेम बदलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे फार्मर्स जो हैं वो अर्न करने लगे, उनके बच्चे पढ़ने लगे, गांव में कॉन्फिडेंस आने लगा लोगों में। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये रिवॉल्यूशन किसी बड़े नेता से नहीं बल्कि कॉमन लोगों से मिलकर के बना था। तो कहानी अभी शुरू हुई है मेरे दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुई। आगे क्या हुआ, कैसे कैसे ये अमूल हमारे घरों तक पहुंचा है, हम इस कहानी को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए कुछ हटकी सीरीज में मोनिका के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर, और एंजॉय करते रहिए प्यारे प्यारे।

Cinemas, पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार की उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM पर कुछ हटके सीरीज। और आज कुछ हटके सीरीज में कहानी चल रही है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। अब आता है स्टोरी का वो पार्ट जहाँ चीजें सिर्फ अच्छी नहीं थी बल्कि लेजेंडरी होने लगी थी। धीरे धीरे जो छोटा कोऑपरेटिव शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैलने लगा और फिर लॉन्च हुआ ऑपरेशन फ्रूट। इसे बाद में पूरे देश ने नाम दिया व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। अब इमेजिन करो एक ऐसा देश जहाँ कभी दूध की कमी थी, वही देश दुनिया का बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनने लगा। और ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, ये हुआ था स्मार्ट प्लानिंग, टीम वर्क और ट्रस्ट से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की सबसे पावरफुल बात पता है क्या थी? कि वो लोगों को छोटा फील नहीं कराते थे। वो गांव वालों को देखकर ये नहीं सोचते थे कि इनसे क्या ही हो पाएगा। वो सोचते थे अगर सही मौका मिले तो ये लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं और साथ ही साथ ये लोग इंडिया की पूरी सिचुएशन को बदल कर रख सकते हैं। उन्हें ह्यूमन के रियल पावर को पता था। वो कभी भी इंसान को गरीबी या अमीरी से नहीं तोलते थे। वो किसान को किसान की तरह देखते थे, उसकी पावर को समझते थे। वो सोचते थे अगर सही मौका मिले तो यही लोग जो है पूरा इंडिया बदल सकते हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ। उनकी लीडरशिप इतनी चिल लेकिन शार्प थी कि लोग नेचुरली इंस्पायर्ड हो जाते थे। कहते हैं ना कि रियल लेजेंड्स को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका काम ही काफी होता है। और धीरे धीरे अमूल सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पहचान बनने लगा। आज जब भी कोई अमूल बोलता है तो सिर्फ बटर या मिल्क याद नहीं आता, एक चेहरा याद आता है, एक ट्रस्ट याद आता है। और उस ट्रस्ट के पीछे थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आज हर घर में अमूल है और हर इंसान डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वो श्वेत क्रांति का पार्ट है। तो कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अभी इस कहानी का बहुत ही प्यारा पार्ट आना बाकी है। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर कुछ हटके सीरीज। मैं हूँ मोनिका।
3: जिंदगी

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना। सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
3: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
2: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
1: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: दांतों में ब्रश घुमाते समय जिगजैग करें, ना कि सड़क पर बाइक घुमाते समय।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: जानी, ये स्विच है, बिजली बचाने के लिए इसे ऑफ करना पड़ता है।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके सीरीज में आज कहानी चल रही है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, एक ऐसे इंसान जिन्होंने फार्मर्स के रियल हक को समझा, उनकी बातों को समझा, उनको हक दिलाने के लिए खुद दुनिया से लड़ गए और भारत में क्रांति लेकर के आए, श्वेत क्रांति यानी दूध की क्रांति। और आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, उसी तरह से ये भी है व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन लेकर के आए थे देश में। और इस बड़ी सी कहानी को सम अप करके मैंने आपको छोटे तरीके से समझाया है, इसलिए ताकि जब भी आप अमूल का कोई प्रोडक्ट या दूध का कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, आप चाय बनाओ, फ्रिज से दूध निकालो या फिर कोई मिल्क प्रोडक्ट खाओ, तो एक बार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को थैंक यू जरूर बोल देना। और जब भी आप अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाओ या चाय पिलाओ तो उन्हें ये जरूर बताना कि ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की देन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने जो है भारत की, हमें अपने आसपास हो रही चीजों की हिस्ट्री का पता होना बहुत जरूरी है। और देश में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा किया है, लेकिन उनकी कहानी अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है, तो उसका जिम्मा मैंने उठाया है। लेकिन वही बात है कि कुछ कहानियां मैं पहुंचा रही हूं, कुछ कहानियां आपको मुझ तक पहुंचानी होगी। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। आपकी कोई विश या आपका कोई मैसेज है जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, आज की हमारी जो थीम है वो आपको कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताइएगा। तो साथ ही साथ अब वक्त हो गया है मेरा आप सभी से विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीकेंड एक नई स्टोरी, एक नई थीम के साथ और एक नए इंसान के साथ। तो अपना ध्यान रखिए और खुद से, अपने अपनों से प्यार करते रहिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप कुछ करने का ठान लेते हो तो वो होकर ही रहता है। बस जज्बा मजबूत होना चाहिए और विजन आपका क्लियर होना चाहिए, चीजें जरूर पॉसिबल होंगी। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय टाटा, एंजॉय करते रहिए इन प्यारी प्यारे गानों।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: इसे सफल बनाए, हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
2: Point 6 FM.

गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी के रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला। पोषण की पाठशाला जहाँ हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत और पोषण के बारे में। आज

0: हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कई नई माओं के लिए ये जर्नी बेहद मुश्किल हो जाती है। कब शुरू करें ब्रेस्ट फीड देना, कैसे ब्रेस्ट फीड दे अपने बच्चे को, कितनी बार ब्रेस्ट फीड करें, ऐसे कई सवाल और डाउट अक्सर मन में आते हैं। आज के एपिसोड में हम ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हर जरूरी पहलू पर बात करेंगे, ताकि हर माँ को मिले सही गाइडेंस और कॉन्फिडेंस। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो आज हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स, कॉमन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस पर अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कृति आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज पोषण की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो सबसे पहले ये बताइए ब्रेस्ट फीडिंग को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए? और अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए फायदेमंद है या माँ की हेल्थ पर भी इसका असर होता है?
1: थैंक यू मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर कृति, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में लगभग 3 साल से काम कर रही हूँ। हम वहाँ पे सुबह शाम ओपीडीज चलाते हैं और 24 घंटे इमरजेंसी में अवेलेबल रहते हैं, और हर तरीके की ऑब्जो गायने की सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज का क्वेश्चन कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इतना जरूरी है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, इवन माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेस्ट और ओवरीज को आगे आने वाले कैंसर से भी बचाता है। प्लस ब्रेस्ट में फैट्स, प्रोटीन्स, सारे एंटीबॉडीज एडिक्वेट मात्रा में होते हैं जो बच्चे को चाहिए। शुरुआत में जो दूध आता है वो पतला आता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स और इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज चले जाएं, और एंड में फैट ज्यादा थिक हो जाता है, जिससे बच्चे का पेट जल्दी भरे, जो कि फॉर्मूला मिल्क में उतना बेटर प्रोपोर्शन में नहीं होता।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि आपने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, ये केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बच्चे के साथ साथ माँ को भी मिलते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें इन्फेक्शन से बचाना, ये सब फायदे ब्रेस्ट फीड के बाद मिलते हैं। तो जितने भी न्यू मॉम्स आज हमें सुन रही हैं, आज का एपिसोड खास आपके लिए है। इस एपिसोड से आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कुछ ही देर में, तब तक एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ हम बात कर रहे हैं आज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, डिलीवरी के बाद पहले एक घंटे में ब्रेस्ट फीड करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है? साथ ही आज हमें ये भी बताइए कि क्लोस्ट्रम क्या होता है और कई लोग इसे वेस्ट क्यों कर देते हैं। अगर क्लोस्ट्रम न्यूबॉर्न बेबी को फीड ना कराया जाए तो कितना नुकसानदेह हो सकता है?
1: पहले घंटे में बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर आप इमीडिएटली लैच करते हो बच्चा लैच बहुत अच्छे से करता है, प्लस माँ और बच्चे की बॉन्ड बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होती है और आगे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर रहती है एंड सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सही रहता है, आपका सप्लाई अच्छा रहता है। जरूरी नहीं कि पहली बार में ही जब आप लैच करो तो मिल्क बहुत अच्छे से आए, स्टार्टिंग में मिल्क थोड़ा कम ही आता है, बट जैसे जैसे बच्चा सक करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और लैचिंग होता है। कोलेस्ट्रम पहले 2 से 3 दिन का मिल्क जो होता है उसे बोलते हैं, ये गाढ़ा पीला होता है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत ज्यादा फैट एंड न्यूट्रिएंट रिच होता है। ये देखने में तो सब पीला गंदा लगता है तो इसलिए बहुत लोग इसे डिस्कार्ड करते हैं, बट ये आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, आगे आने वाले इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो इसे कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना है, बच्चे को जरूर पिलाना है, इससे बच्चे को कोई गैस कोई कब्जी कुछ नहीं होगी।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया क्लोस्ट्रम की अगर बात करें तो ये डिलीवरी के बाद पहले 2 से 3 दिन वाला मिल्क होता है जो कि एक न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे उन्हें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्लोस्ट्रम मिल्क की वजह से। इसलिए हमेशा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि बेबी को फीड कराना बेहद जरूरी है सो दैट कि वो आगे आने वाली बीमारियों से लड़ सके बिना किसी परेशानी के। ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े और भी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं रेडियो महारानी पर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, साथ ही सही ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन कौन सी होती है ताकि माँ को दर्द भी ना हो और बेबी को सफिशियंट मिल्क मिल सके।
1: सिजेरियन के बाद जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, स्पेशली पहले एक दो दिन, वो ये होता है कि टांकों में बहुत दर्द होता है, प्लस सिजेरियन के बाद 24 घंटे तक माँ को बैठने की अनुमति नहीं होती क्योंकि स्पाइनल हेडेक का रिस्क रहता है। तो इसमें आपको बच्चे को लिटा के ही फीड कराना है। आप फुटबॉल पोजीशन ले सकते हैं, साइड में करवट लेके बच्चे को पकड़ के फीड करा सकते हैं। और एक दिन बाद जब आपको बैठना अलाउड है तो पिलो जरूर यूज करें, स्पेशली डोनट।

0: 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल, जो आज हमें बता रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी होता है, किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराया जाए, कितना बेनिफिट हो सकता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड करना। डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निप्पल पेन या फिर क्रैक्स की, जो अक्सर एक न्यू मदर फेस करती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? साथ ही अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कैसे पता लगाएं कि बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है या बच्चा अभी भूखा है?
1: अगर क्रैक्स हो जाते हैं, जो बहुत सारी महिलाओं को होते हैं, वो ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे ने अच्छे से लैच नहीं किया है, निप्पल उसके पूरे मुंह में नहीं है, तो बाइटिंग या स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं बंद करनी। आप कोई भी क्रीम, लेनोलिन क्रीम आती है, वो लगा के ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनफ ब्रेस्ट फीडिंग हमें ऐसे पता चलती है कि आपका बेबी 6 to 8 टाइम्स यूरिन कर रहा है अच्छे से, उसका वेट गिर नहीं रहा। आपके बच्चे का पैदा होने के बाद 10% वेट गिरता है, बट उसके बाद बढ़ना चाहिए। साथ ही बच्चे रोते नहीं है ब्रेस्ट फीड के बाद, कम से कम पेट भरा हुआ लगता है। अगर ब्रेस्ट फीड कराते ही आपका बच्चा क्रैंकी हो रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं फीडिंग अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो लेकर आई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, अब बात करते हैं कॉमन मिथ्स के बारे में। बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जिन्हें लगता है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन कम है, क्या ये सच होता है या सिर्फ एक मिथ है? साथ ही अगर बात करें फॉर्मूला मिल्क और मदर्स मिल्क में, क्या फर्क होता है इन दोनों में? और जितनी भी वर्किंग मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं?
1: ये बहुत ज्यादा कॉमन अनसर्टेनिटी रहती है माओ में कि हमें अच्छे से दूध नहीं बन रहा, बच्चा बार बार भूखा हो रहा है। ब्रेस्ट मिल्क बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बच्चे को 1.5 से 2 घंटे में फिर से भूख लग जाती है। फॉर्मूला मिल्क हैवी होता है तो जनरली काफी देर तक बच्चे को भूख नहीं लगती, 3 घंटे तक, इसलिए हमें लगता है कि बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे अच्छे से पेट भर रहा है और ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं। बट ऐसा नहीं है, अगर आपका ब्रेस्ट हैवी रहता है एंड आप आराम से फीड करा पा रहे हैं हर 2 घंटे में, तो मिल्क सफिशिएंट है। प्लस जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बेबी का वेट मॉनिटर कर रहे हैं और बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली 6 से 7 महीने ऑफ बेबी आप का बच्चा हर 2-3 घंटे में फीड करेगा ही करेगा। बच्चे क्योंकि बाहर आते हैं तो जनरली क्रैंकी रहते हैं, बहुत टाइम ये होता है कि बच्चे बार बार रो रहे हैं तो हमें लग रहा है पेट नहीं भर रहा, भले मिल्क प्रोडक्शन पूरा है। तो बच्चे के रोने पे हमेशा ना जाएं, आप खुद देखिए कि क्या आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, वेट, डाइपर चेंज, इन सब पे ध्यान दीजिए। फॉर्मूला मिल्क और मदर मिल्क में ये अंतर है, फॉर्मूला मिल्क में सिर्फ न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको, मदर मिल्क में लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी आपको टीके लगे हैं या जो भी आज तक आपको इन्फेक्शन हुए हैं उसकी एंटीबॉडीज हैं आपके पास, जो माँ के दूध से बच्चे में जाती है और उस इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करती है। फॉर्मूला मिल्क में आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती, तो ब्रेस्ट मिल्क इज ऑलवेज बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। अब वर्किंग मदर्स, आजकल हम सब काम करते हैं तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं होता।

0: हीट ब्रेस्ट मिल्क को अगर हम करते हैं तो लाइव ऑर्गेनिज्म उसके मर जाते हैं। तो आपको हमेशा पानी गर्म करना है और उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क को गर्म करना है इनडायरेक्ट हीट से। तो आप प्रिजर्व कर लीजिए अपना ब्रेस्ट मिल्क, आप मिक्स फीडिंग दे दीजिए। अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ ऑफ अ वर्किंग मॉम इज बेटर।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, ब्रेस्ट मिल्क इज बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। अगर सिर्फ फॉर्मूला मिल्क की बात की जाए तो कहा गया है कि यहाँ पर बेबी को न्यूट्रिशंस उतने नहीं मिलते जितने रिक्वायर्ड होते हैं। एंड जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि मदर मिल्क में लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं, आपके बच्चे को स्ट्रांग रखते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। जितने भी टीके, जितनी भी वैक्सीन एक मदर को लगती है वो सब मिलती है एक मदर मिल्क में बच्चे को। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज्यादा कराएं, फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंड ना रहे। और जितनी भी वर्किंग मदर है उन्हें गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने ये भी बताया है आज कि आप किस तरह से अपना ब्रेस्ट फीड प्रिजर्व करके रख सकते हैं सो दैट कि आपका बेबी जब भी भूखा हो उस मिल्क को कंज्यूम कर सके। इसी के साथ और भी सारे मिथ हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

शानदार सुरेख के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहां आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें मदर्स न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल की, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को अपनी डाइट में किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, अगर एक

0: मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो क्या इसका असर मिल्क सप्लाई में पड़ता है?
1: माँ का न्यूट्रिशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है मिल्क प्रोडक्शन से, तो माँ का न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे घरों में ये होता है कि पहले 6 दिन माँ को कुछ नहीं दिया जाता, कम बस दाल का पानी, लाइट, जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो, उससे मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। माँ को प्रॉपर कैल्शियम आयरन रिच खाना खाना जरूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम देना है बच्चे को तो माँ का इंटेक बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूर दें, प्रोटीन रिच होना चाहिए। अगर आप अंडे खाते तो अंडे, दूध, पनीर, ये मिथ है कि दूध टांके खराब करता है, दूध जरूरी है। हरी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, फल सब दीजिए। मेंटल स्ट्रेस, नींद कम होना, सब मिल्क प्रोडक्शन इफेक्ट करता है। अगर आप रात को सोते नहीं हैं, आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम बनता है, जिससे दूध कम बनता है, तो मेंटल पीस ऑफ अ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो मायानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन की, डॉक्टर अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एनक्रोचमेंट, ब्लॉक डक या फिर मैस्टाइटिस जैसे इश्यूज में, साथ ही अगर बेबी लैच नहीं कर रहा हो तो मदर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस स्टेज पर आकर एक लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलना बेहद जरूरी हो जाता है।
1: अगर आपके ब्रेस्ट में सूजन आ रही है, डक्ट बंद हो गई है, दर्द हो रहा है, लाल हो रहा है, तो तुरंत सिकाई करें, पहले गर्म फिर ठंडे की, उससे डक्ट्स खुलेंगी, और फिर ब्रेस्ट फीड कराएं। जिस ब्रेस्ट में सूजन है उससे ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि वो सूजन दूध के इकट्ठे होने से हो रही है। अगर उसे आप खाली कर दोगे तो सूजन ठीक हो जाएगी, अगर आप उसे नहीं निकालेंगे, ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे, तो उसमें थोड़े टाइम में पस बन जाएगा और चीरा लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है। सूजन में बहुत लोगों को लगता है कि हमें वहाँ से दूध नहीं पिलाना और दूध फेंक देना, ऐसा कुछ नहीं है, दूध ठीक है, जरूर पिलाएं उसमें से दूध और उसे खाली करें। अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा तो आप उसे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखिए। जब बच्चे की चमड़ी और आपकी चमड़ी मिलती है तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है आप में और बच्चे में, और उसकी लैचिंग कैपेसिटी बेटर होती है। ध्यान दीजिए कि लैच अच्छे से कर रहा है या बच्चा या नहीं, अगर अच्छे से करेगा तो हो सकता है फिर आपको हेल्प हो। अब किस स्टेज पर आपको लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलना है, वो तब है अगर पस निकलने लग जाए आपके ब्रेस्ट से, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जो सिकाई के बाद भी कम नहीं हो रहा, बच्चे ने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और आपको बुखार आना शुरू हो गया है, इस केस में जरूर डॉक्टर को दिखाएं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग आखिर होती क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है और मदर और बेबी को इससे क्या फायदे मिलते हैं, साथ ही डॉक्टर ने ये भी बताया किस तरह की मिथ हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, और डॉक्टर ने टिप्स भी दिए हैं कि किन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के दौरान। अगर हम बात करें लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलने की, तो डॉक्टर ने बताया कि जब भी आपको ये लगे कि आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, आपका बेबी लैच नहीं कर रहा है, आपको पेन फील हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग

0: बताइए कि क्या मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, एंड साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक होनी चाहिए, और अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की तो कब से स्टार्ट करनी चाहिए, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद करते वक्त विनिंग क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए।
1: एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने होती है, इसका मतलब है आप कोई पानी हनी कुछ भी नहीं देते। इंडियंस बहुत ज्यादा घुट्टी में बिलीव करते हैं या शहद चटाने में बिलीव करते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है। बच्चे में कोई इम्यूनिटी नहीं होती, वो पेट के अंदर था, उसको किसी भी एंटीजन का एक्सपोजर नहीं है। आप कुछ भी देंगे जो बाहर का है, उससे इन्फेक्शन रिएक्शन होने के बहुत चांस होते हैं। हनी में तो बल्कि एक बॉटुलिज्म टॉक्सिन होता है जो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ब्रेस्ट फीड के अलावा 6 महीने तक आपको पानी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा इवन फॉर्मूला मिल्क में पानी मिलाया जाता है जो कि उबला हुआ होता है, और ब्रेस्ट फीड मिल्क जो होता है स्टार्टिंग का उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होता है। तो कुछ नहीं देना पहले 6 महीने तक, उसके बाद आप धीरे धीरे सेमी सॉलिड्स ऐड कर सकते हैं जैसे बनाना की प्यूरी, चावल का पानी थिक करके, दाल बिल्कुल पतली करके सूप की तरह, ये सब धीरे धीरे ऐड करिए। इसे हम वीनिंग बोलते हैं जो 6 महीने के बाद शुरू होती है, और अगर पॉसिबल है तो वीनिंग के साथ साथ 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ईशाना सुरेख के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, तो ये बताइए कि ब्रेस्ट फीडिंग का माँ के मेंटल हेल्थ और बॉन्डिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? साथ ही अगर एक न्यू मॉम ये गिल्ट फील करे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप?
1: हम ब्रेस्ट फीडिंग को एक माँ बनने के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। जब माँ अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे कौन से माँ हो जो दूध नहीं पिला पा रही, या फिर तुम अपने बच्चे को प्यार नहीं करती इसलिए दूध नहीं आ रहा। बट ये सच नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से होता है, बहुत बार दूध नहीं बनता। तो हमें उन माओ को शेम करने से बेटर है सपोर्ट करिए। वो माँ भी उतने ही मन से ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है जितना आप चाहते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फेड बेबी जरूरी नहीं है, फेड बेबी जरूरी है। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, आजकल की साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऑलमोस्ट सेम हम कंपोजिशन में दूध दे सकते हैं। पर एक चीज जो ध्यान रखनी है, गाय के दूध पे नहीं जाना है, आपको पाउडर फॉर्मूला मिल्क ही देना है। गाय के दूध में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है जो इनिशियल इयर्स में आपके बच्चे को चाहिए, तो फॉर्मूला मिल्क दीजिए। प्लस गाय का दूध एलर्जी वगैरह भी स्टार्टिंग में कर सकता है, तो वो आप एक साल बाद शुरू कर सकते हैं। तो हमेशा मदर्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि हैप्पी मदर ही हैप्पी बेबी को लीड करेगी। थैंक यू
0: सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। एंड दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल और रीअश्योरिंग रहा होगा। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे का पहला पोषण नहीं, बल्कि माँ और बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता भी बनाता है। और आज हमने जाना कि सही टेक्निक, पेशेंस और गाइडेंस के साथ ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। और आज इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रही डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस एंड सिंपल टिप्स हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और ढेर सारी टिप्स के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: हेलो हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। मैं हूँ आपके साथ गीत और शो है खास मुलाकात। तो आज मेरे साथ खास मुलाकात में है संगीता सक्सेना जी, एकेडमिक डायरेक्टर मैकलिन एंड मैकेंजी एजुकेशन कंपनी, सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम CBSE। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू मैम
0: जी। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। एजुकेशन सिस्टम हर किसी की जिंदगी का हिस्सा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की दुनिया के लिए रेडी है। तो मैम सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ऐसा क्या था जो पहले नहीं था?
1: ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है
0: जी
1: 2020 में, ये इतने डेकेड्स के बाद सरकार ने चेंजेस किए हैं, लेकिन बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो हम ब्रिटिशर की बनाई हुई फॉलो कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी जान के बनाई थी कि हमारी थिंकिंग स्किल्स के लिए, रीजनिंग स्किल्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी
0: जी।
1: वो ये चाहते थे कि बस वो इंडियंस को ऐसी एजुकेशन दें कि वो क्लर्क्स बने और इससे अधिक वो उनके लिए कुछ ना कर सकें, कुछ अपने देश का उत्थान कर ही ना सकें
0: जी।
1: और हम सालों साल डेकेड से उसी लीक को पीट रहे थे, कुछ चेंज नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आफ्टर ऑल बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसी लाए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि पूरा फेसलिफ्ट हो गया एजुकेशन का। इसमें क्या है, अब एक स्टूडेंट का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मॉरल वैल्यूज है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये नहीं रोट लर्निंग की कोई जगह ही नहीं है उसमें
0: जी।
1: और बच्चा जो है सोच समझ के रीजनिंग के क्वेश्चन करेगा, अपने माइंड को अप्लाई करेगा, ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया और वो एक मतलब एक मूक दर्शक की तरह टीचर को नहीं देखेगा। इंटरैक्टिव सेशन होंगे,

0: जो टीचर पढ़ाएगी वो एक्टिविटी बेस्ड होगा और जॉयफुल क्लासरूम होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, मतलब जो बच्चे ने पढ़ा, मान लीजिए परसेंटेज पढ़ा दिया, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि तुम दुकानदार के पास गए, तुमने परसेंटेज पढ़ा, 50% तुम्हें डिस्काउंट कर रहा है, तो बताइए कितने रुपए का सामान कितने में तुमने खरीदा, ऐसे कुछ एग्जांपल करके दुकान से सेट कर दी जाएगी। यानी प्ले वे मेथड हो गया सीनियर क्लासेस के लिए भी, स्पेशली मिडिल स्कूल्स के लिए। यानी पढ़ाई का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। और सबसे अच्छी बात है इंक्लूसिव एजुकेशन दे दी, हर बच्चा बराबर है, और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट कर दिया। जो बच्चे आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो मतलब अपना कुछ क्राफ्ट वर्क में आगे निकल सकते हैं, गार्डनिंग में आगे निकल सकते हैं, डिजिटल चीजों में आगे निकल सकते हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करके एग्जाम ही देना है।
1: जी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मैम एक और सवाल है, क्या ये पॉलिसी सिर्फ अर्बन स्कूल्स के लिए प्रैक्टिकल है या छोटे शहरों और गांवों में भी इक्वली लागू की गई है?
1: नहीं, ये सभी जगह के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है
0: जी,
1: क्योंकि आगे एक स्कॉफ भी सरकार ने बना दिया है।
0: जी जी।
1: अब स्कॉफ क्या करता है कि अगर आप ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू करें, उसकी चेकिंग करेगी सरकार।
0: ओके।
1: और वो फॉर्म भरते हैं स्कूल के लोग और वो जाती है वहाँ और केवल जाते जाके जमा होके खाना पूरी नहीं हो रहा है, वो उसको देखते हैं, चेकिंग करते हैं और उनके एफिलिएशन पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं
0: जी।
1: अगर ये नहीं हुआ फिर उनको समय दिया जाएगा कि आप इस काम को करिए। तो ये मेयर आई वॉश नहीं है और इसके लिए सरकार ने सीबीएसई ने एक काम और किया है कि टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। अब हर स्कूल में टीचर्स ट्रेन्ड हैं इसी एजुकेशन पॉलिसी के लिए और वो रिसोर्स पर्सन कहलाते हैं। अभी क्या है कि 50 आवर्स की ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी है टीचर्स के लिए कि तुम अपनी ग्रोथ करो हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से
0: जी।
1: और ये 25 आवर्स जो है वो सीबीएसई आके करता है और 25 आवर्स ये बाहर से किसी को बुला सकते हैं।
0: ओके।
1: तो ये सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है और चेकिंग कर रही है।
0: जी जी। आज के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ऑप्शंस बहुत हैं उनके पास लेकिन कहाँ जाएं ये वो रास्ता उनको एग्जैक्टली नहीं पता है। तो क्या ये एनईपी क्लैरिटी दे रही है या कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा रही है?
1: नहीं, कोई भी अच्छी जब नीति आती है तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और नए रास्ते खोलने के लिए आती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि क्या होता है कि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं भाई हम तो साइंस लेंगे।
0: हाँ जी।
1: और स्कूल भी उनको साइंस दे देता है कि नहीं नहीं अगर कम मार्क्स हैं तो आप आर्ट्स में जाइए या कॉमर्स में जाइए, जो कम मार्क्स के होते हैं वो कॉमर्स में चले जाते हैं। अभी जो सिस्टम बना हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा और कम वाले आर्ट्स में चले जाते हैं। मगर देखिए पेरेंट्स भी परेशान हो जाते मार्क्स नहीं आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी रेडियो महारानी के माध्यम से
0: जी
1: कि हर बच्चा अच्छा है, हर बच्चे की अलग प्रतिभा है। जीवन में होता क्या है, जो साइंस लेता है वो इंजीनियर बनता है, मान लीजिए वो आईआईटी का इंजीनियर बन गया, ठीक है आप खुश हो गए। लेकिन उसके ऊपर उसका मैनेजर जो होता है वो एमबीए होता है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है और इंजीनियर भी नहीं होता। यानी आईआईटी के ऊपर एक कॉमर्स वाला आ गया
0: जी
1: और कॉमर्स वाले मैनेजर के ऊपर आईएएस आ जाता है जो आर्ट साइड का होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो देखिए ना हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बार क्या हुआ एक जंगल में शेर ने कहा कि सारे जानवरों तुम मेरे पास आओ, मैं अपना उत्तराधिकारी अपने बाद राजा मैं डिक्लेयर करूंगा, सबसे शक्तिशाली वो माना जाएगा जो पेड़ पे चढ़ जाएगा। अब सारे जानवर चुप, बंदर तो उछल के पेड़ पे चढ़ गया, हाथी बेचारा सूंडी हिलाता रह गया, मछली तो तालाब से ही निकल के नहीं आई। तो क्या इसका मतलब ये है कि बंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था? हर एक के अंदर अगर तैरने की अगर स्विमिंग का कंपटीशन होता तो मछली फर्स्ट आती, बेचारा बंदर तो शायद डूब ही जाता। तो हर बच्चे के अंदर अलग अलग, जैसे अलग अलग फूलों की खुशबू है, तो हर बच्चा अच्छा है। जो थोड़ा स्लो लिखता है उसके लिए सरकार ने क्या किया है, सीबीएसई ने टाइम बढ़ा दिया है, स्पेशल एजुकेटर्स रिक्रूट करवा दिए हैं कि उनको थोड़ा उनकी बुद्धि है मगर वो थोड़ा सा लेट लिखते हैं तो उनको एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी टाइम उनका बढ़ गया, जिससे हर बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। हमारे जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं वो अच्छा ग्रो करें और अच्छे सिटीजन्स होंगे तो अच्छे देश का निर्माण होगा
0: जी।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: वर्सेस स्किल्स, ये डिबेट बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन क्या एनईपी जो है वो सच में मार्क्स का प्रेशर कम कर रही है?
1: जी हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जो पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है. मार्क्स के पीछे नहीं भागना है. जैसे वो आपको थ्री इडियट्स में कहता है ना कि भाई

0: मतलब जिसको हम लोग स्कूल में बैक बेंचर्स बोल देते हैं, वो बहुत अच्छा जिंदगी में कर जाते हैं। तो मार्क्स कोई भी 3 घंटे का पेपर किसी भी बच्चे की क्षमता को आंक नहीं सकता है।
1: जी जी जी।
0: तो बच्चे के अगर मार्क्स कम आते हो, पेरेंट्स को बिल्कुल भी उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, उसको स्किल अच्छा है तो स्किल में डाल दें, और स्किल वाले तो अपना काम खोल लेते हैं।
1: जी।
0: अगर वो कुकिंग थोड़ी सीखी है या उन्होंने स्किल में, जैसे सरकार ने सीबीएसई ने स्किल डेवलपमेंट में डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, कुकिंग सिखा रहे हैं, गार्डनिंग सिखा रहे हैं, क्या पता बच्चा अपना क्या बिजनेस खोल ले।
1: एग्जैक्टली जी। मैम, जैसे अगर हम आपके टाइम की बात करें तो ये डिजिटल एरा जिसको कहा जा रहा है, एआई का जमाना है, तो क्या ये एनईपी जो है वो फ्यूचर करियर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है?
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल ये फ्यूचर करियर को देख के ही बनाई गई है। देखिए, हमारा जो इंडियन माइंड है, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चा हो, वर्ल्ड में इट इज सेकंड टू नन। मैंने तो देश विदेश में हर जगह एजुकेशन पॉलिसी स्टडी करी है। अमेरिका में हम स्कूल्स विजिट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्कूल विजिट करते हैं, और अपने मॉरल

0: पढ़ता बहुत है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत है.
1: एग्जैक्टली.
0: और टीचर के ऊपर तो अति का प्रेशर है. फॉरेन कंट्री में पढ़ाई खेल खेल के होती है
1: जी.
0: बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है. प्राइमरी में तो बुक्स ही नहीं है
1: जी.
0: तो प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं है, सारी चीज प्रैक्टिकल है. और वहां पर जो चीज है वहां पे साइंटिस्ट पैदा किए जाते हैं, इसीलिए वो लोग साइंस में बहुत आगे जाते हैं
1: जी.
0: और हमारे यहाँ अभी तक जो सोच थी वो नौकरी की सोच थी, लेकिन आप देखिए इंडिया में डिजिटल आने से और जो 2020 में जो पॉलिसी आई तो लोगों की सोच बदली. अब लोग अपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं. ये एनईपी की देन है. और अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जॉयफुल क्लासरूम लर्निंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है एनईपी.

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हम आखिरी सवाल पर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल ये है मेरा आपसे, अगर आज के स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर सेफ नहीं है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज होने वाला है आपका?
1: कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मार्क्स नहीं आते हैं, और वो हताश हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आए, फिर फेल हो गए। मान लीजिए टेस्ट में बच्चा फेल हो गया, उसके 25 में से 5 आए, उसने मेहनत करी
0: जी,
1: और उसके 25 में से 10 आए, वो बच्चा फिर फेल हो गया
0: जी।
1: लेकिन उस बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मेरी मेहनत से 5 से 10 बने हैं
0: जी,
1: एक महीने में, तो अगले टेस्ट में हम 15 बना के पास हो जाएंगे
0: जी।
1: और फिर भी कभी कभी बच्चे की कॉम्पिटेंसी नहीं होती, उतना कॉम्पिटेंट उस सब्जेक्ट में नहीं होता है, पता चला मैथ्स में बच्चे वीक हैं और इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, तो वो उसी सब्जेक्ट को पकड़े जिसमें अच्छे हैं। पर ये कभी निराश नहीं होना चाहिए बच्चों को कि मेरे भाग्य में नहीं है, मैं हताश हो गया और स्ट्रेस ले ले। मैं उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी लिखी हुई
0: जी, जी।
1: हाथों की लकीरों को देखकर कभी हताश नहीं होते, हाथों की लकीरों को देखकर कभी निराश नहीं।

0: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या नई किताबें भी चाहिए?
1: हाँ जी, जब हर टीचर को ट्रेन करना है तो क्यों ना उसको वो किताबें पकड़ा दी जाए कि वो हर लेसन को कैसे पढ़ाए
0: जी,
1: क्योंकि हर लेडी की अपनी क्षमताएं, हर जेंट्स की, टीचर की अपनी क्षमता है, वो किसी चीज में अच्छा है, वो कोई किसी चीज में अच्छा है
0: जी।
1: तो अभी यही सोच करके, एज ए रिसोर्स पर्सन, और मैंने विदेश में भी पढ़ाई करी है, वो सब चीजों को सोच करके मैंने मेरी कंपनी के लिए इंग्लिश ग्रामर की बुक्स लिखी है 1 से 8, जो कि स्कूलों में लगा भी दी गई है, फरीदाबाद के स्कूलों में भी लग गई है
0: जी।
1: और उसमें क्या है, खाली कंटेंट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है या क्वेश्चंस कैसे पढ़ाए जाएंगे या स्टेटमेंट कैसे है, कंटेंट तो है ही, उसमें ये है कि कैसे पढ़ाना है
0: जी,
1: एग्जेक्टिव कैसे पढ़ाना है। टीचर आएगी, बैग दिखाएगी, दिस बैग इज, व्हाट कलर ऑफ दिस बैग, तो बच्चा बोलेगा ब्लैक, यस ब्लैक इज एग्जेक्टिव। मतलब आसपास के जो क्लासरूम में एग्जाम्पल्स हैं वो देख देख के टीचर उसको कैसे पढ़ाए, टीचर को भी आनंद आए और बच्चे को भी आनंद आए। और ये किताबें मेरी बहुत सराही गई हैं, और ये मुझसे कहा गया है कि आप 1 से लेकर 12 तक लिखे, तो होपफुली हमारी कंपनी 12 तक इसको कंप्लीट कर लेगी। बहुत मेहनत करी सबने इसमें
0: जी। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से रेडियो महारानी के स्टूडियो में आने के लिए वंस अगेन थैंक यू।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। और लिसनर्स, आप सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।
1: थैंक यू।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: आज की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि उस एक्टर की है जिसने बताया कि हीरो दिखता कैसा है ये जरूरी नहीं, हीरो काम कैसा करता है असली बात वही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और इनकी कहानी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
2: यूपी का एक छोटा सा कस्बा बुढ़ाना, वहां से एक लड़का निकलता है हाथ

0: था अपना पेट भरना। नवाज ने वहाँ के एक बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी की। सोचिए, पूरा दिन गार्ड की ड्यूटी और शाम को एक्टिंग की प्रैक्टिस। उन्होंने ठान लिया था कि काम चाहे कोई भी हो, मंजिल से ध्यान नहीं हटाना है। 1996 में जब वो मुंबई आए तो उन्हें लगा था कि उनका हुनर उन्हें रास्ता दिखा देगा, पर मुंबई की भीड़ में वो कहीं खो से गए। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां उनके लुक्स उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए।
1: और बाद में कैसे उनका स्ट्रगल चालू हुआ, करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूँ मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप लोग जानते हो कि एक वक्त ऐसा था जहां नवाज के पास ना सर पर छत थी और ना ही जेब में पैसा, सिर्फ एक पुराना खत था जो उन्हें हर रोज गिरने से बचाता था। वो खत किसका था, करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में और उनकी स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: मुंबई में नवाज का कोई गॉडफादर नहीं था। वो ऑडिशंस देते पर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आप हीरो जैसे नहीं दिखते। साल दर साल बीतते गए, वो 12 साल तक छोटे मोटे रोल्स करते रहे। कभी सरफरोश में एक मिनट का रोल, तो कभी मुन्ना भाई MBBS में एक पॉकेट मार। पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों के साथ एक कमरे में रहते और उनके लिए खाना बनाते ताकि रहने की

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हर इंसान की लाइफ में एक सेटबैक आता है और फिर हर इंसान कमबैक करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ में। अभी तो सिर्फ स्ट्रगल था, अब देखिए असली धमाका, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे किरदार की जिसने रातों रात बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार्स की छुट्टी कर दी थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडर आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द लेजेंडरी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और उनकी लाइफ की स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: कहते हैं ना कि टैलेंट को आप ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रख सकते। 2012 में वक्त ने ऐसी करवट ली कि पूरा बॉलीवुड देखता रह गया। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई और पर्दा फट गया। नवाजुद्दीन जब फैजल खान बनकर स्क्रीन पर आए तो लोगों को समझ आया कि असली एक्टिंग क्या होती है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये नवाजुद्दीन का उन सारे रिजेक्शंस को जवाब था जो उन्होंने बरसों तक झेले थे। कहानी फिल्म के गुस्से वाले ऑफिसर से लेकर वासेपुर के गैंगस्टर तक नवाज ने रातों रात सबको अपना फैन बना दिया। जो इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट करती थी आज वही उनके पीछे लाइंस लगाए खड़ी थी। उनका स्ट्रगल अब हिस्ट्री बन चुका था।
0: और कैसे उन्होंने बॉलीवुड से रेड कार्पेट तक का सफर किया, करेंगे इसके बारे में भी बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, एंड मेरे साथ स्टोरी नरेट कर रही है रीत।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या

0: सोचिए, एक वक्त जिस शख्स ने दूसरों के बंगलों के बाहर पहरा दिया, आज उसका अपना घर देखकर दुनिया दंग रह जाती है। वॉचमैन की वर्दी से लेकर कांस के एक्सपेंसिव टक्सीडोस तक, ये सफर सिर्फ सक्सेस नहीं, एक स्टेटमेंट थी। लेट्स टॉक अबाउट हिज फाइनल फ्लाइट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और कैसे उन्होंने रेड कार्पेट तक का सफर किया। करेंगे इसके बारे में बात, और इसके बारे में नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: आज का सीन देखिए दोस्तों, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कभी वॉचमैन थे, आज कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स में उनका बोलबाला है। मुंबई में उनका अपना एक शानदार बंगलो है जिसे उन्होंने नाम दिया है नवाब। ये उनके पिता के लिए एक सम्मान है और उनकी अपनी मेहनत का इनाम। नवाजुद्दीन की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके पास पेशेंस है और आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उड़ने से नहीं रोक सकती। उनकी ये उड़ान आज हर उस यंग ड्रीमर के लिए एक उम्मीद है जो जीरो से शुरू कर रहा है।
0: जहां लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सफर चुना, क्योंकि असली पहचान मंजिल से नहीं संघर्ष से बनती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। मैं फिर मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: You got to.
1: Pushpa, I hate water wasting रे. जा जाके टंकी बंद कर.

0: Yes, yes. Say it again.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभव को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हैं और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ, देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात

save life. पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं। तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है। उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता। और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में।
2: देखिए, स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है। कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है, मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है, दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्परेरी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं। उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना है, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन, ये आपको अश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो। यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

इसी गाने के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं एक ऐसा शो जहां कहानियां सिर्फ सक्सेस की नहीं होती बल्कि उन सपनों की होती हैं जो कभी बहुत छोटे से शुरू हुए थे। इस शो का नाम है बिजनेस अनप्लग्ड और यहाँ मैं आपको मिलवाती हूँ उन लोगों से जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलों को लेकर बहाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें ही अपनी ताकत बना लिया। क्योंकि सच कहूँ तो किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उनके पीछे होती है एक लंबी जर्नी। कभी गरीबी, कभी स्ट्रगल, कभी एक ऐसा दिन जब लगा कि शायद अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं रुकते नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसा लड़का जिसके घर की इतनी मुश्किल थी कि कई बार कपड़े और चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिनकी माँ घर चलाने के लिए दूध बेचती थी और रोज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पकड़कर कॉलेज जाता और कॉलेज शुरू होने से पहले घंटों रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करता क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लेकिन वही लड़का बाद में एक ऐसी कंपनी खड़ी करता है जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक में अपना नाम बना चुकी है, एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू आज हजारों करोड़ रुपए में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू होकर एक ग्लोबल बिजनेस खड़ा कर दिया। उस नाम के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ हूँ गीत, और जहाँ मैंने बात की अभी थोड़ी ही देर पहले एक ऐसे इंसान की जिनका बचपन बहुत साधारण था, एक ऐसा लड़का जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिनकी माँ घर को चलाने के लिए दूध बेचती थी और रोज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पकड़कर वो कॉलेज जाते थे, घंटों रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। तो अब वो मोमेंट आ गया है जब मैं रिवील करने जा रही हूँ आज के बिजनेस अनप्लग्ड के बिजनेस टाइकून का नाम। तो आज की कहानी है डॉक्टर ए वेलुमणि की। जी हाँ, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और MD। आज के वक्त में थायरोकेयर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी है। इस कंपनी के 950 से ज्यादा ब्रांडेड आउटलेट्स और 5000 से ज्यादा नॉन ब्रांडेड आउटलेट्स हैं, और इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ है। आज इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 6600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे एक ऐसी जर्नी छुपी हुई है जिसमें गरीबी भी थी, स्ट्रगल भी था और कई ऐसे मोमेंट्स भी थे जब सब कुछ आसान नहीं था। तो आखिर कैसा था ए वेलुमणि का चाइल्डहुड, कैसे एक छोटे से गांव का लड़का धीरे धीरे साइंटिस्ट बना और फिर साइंटिस्ट से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उनकी फैमिली, एजुकेशन और लाइफ की शुरुआती इयर्स की कहानी आज मैं बताने वाली हूँ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आप मेरे साथ बने रहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल।

अनप्लग्ड और मैं आपके साथ हूं गीत। और आज मैं बात कर रही हूं थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर ए वैल्यूमनी के बारे में, क्योंकि अक्सर हम किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सक्सेस दिखती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो जर्नी होती है वो बहुत कम लोग जानते हैं। और वैल्यूमनी की स्टोरी तो सच में एक ऐसी स्टोरी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर फोकस स्ट्रांग हो तो रिसोर्सेज की कमी भी इंसान को रोक नहीं सकती। ए वैल्यूमनी का जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में हुआ। इनका परिवार बहुत ही ज्यादा साधारण था, बल्कि यूं कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन काफी कमजोर थी। इनके फादर एक पुअर फार्मर थे, लेकिन इनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। मतलब खेती करते थे लेकिन जमीन इनकी नहीं थी। घर में चार बच्चे थे और इतने बड़े परिवार को चलाना आसान नहीं था। ऐसे में वैल्यूमनी की माँ ने घर की जिम्मेदारी संभाली। वो दूध बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। इमेजिन कीजिए, जब घर में इनकम इतनी लिमिटेड हो तब बच्चों को पढ़ाई करवाना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैल्यूमनी की माँ चाहती थी कि

बच्चे पढ़े आगे बढ़े, और शायद यही बिलीव था जिसने वैल्यूमनी के अंदर भी एडुकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पैदा किया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो कोयम्बटूर चले गए। लेकिन यहाँ चैलेंज और बड़ा था। सिटी के कॉलेजेस की फीस उस टाइम लगभग 1,000 से 3,000 रुपए तक होती थी। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने एक ऑप्शन चुना, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय। ये कॉलेज शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। यहाँ फीस कम थी, करीब 300 रुपए, लेकिन हॉस्टल का खर्चा फिर भी उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। उन्हें गवर्नमेंट हॉस्टल मिल गया जो फ्री था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ तक आने जाने का खर्च भी उनके लिए मुश्किल था। बस का किराया एक तरफ लगभग 60 पैसे था, मतलब महीने का लगभग 30 रुपए। ये भी उनके बजट से बाहर था। लेकिन वैल्यू मनी ने यहाँ भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। उस रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। उस ट्रेन का 3 मंथ स्टूडेंट पास सिर्फ 7 रुपए था और यही उनका डेली रूटीन बन गया। वो रोज सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ते थे जो उन्हें 6:25 पर कोयम्बटूर पहुंचा देती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज लगभग 9 बजे शुरू होता था, मतलब उनके पास लगभग 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होता, और शाम को भी ट्रेन 6:10 की थी, तो कॉलेज खत्म होने के बाद भी काफी टाइम बच जाता था। यानी हर दिन उनके पास लगभग 6 घंटे का खाली समय होता। अब कोई भी स्टूडेंट होता तो शायद इस समय को वेस्ट कर देता, लेकिन वैल्यू मनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस टाइम को अपनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बना लिया। वो रोज रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करते थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लगभग 1,000 दिन तक और करीब 6,000 घंटे इन्होंने प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई की। कभी कभी लाइफ हमें परफेक्ट एनवायरमेंट नहीं देती, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो इंसान कहीं भी सीख सकता है। वैल्यू मनी बाद में कहते हैं, दैट रेलवे प्लेटफॉर्म एक्चुअली मेड मी अ साइंटिस्ट। और सच में वही डेडिकेशन उन्हें आगे लेकर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने बीएससी डिग्री पूरी कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी लाइफ आसान नहीं हुई। अब एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था और वो था करियर शुरू होने का। उन्होंने छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन वहाँ जो उनको सैलरी मिलती थी वो इतनी कम थी कि शायद आज के टाइम में सुनकर लोगों को यकीन भी ना हो, लेकिन उस जॉब ने इनको बहुत बड़ा लेसन दिया और वही लेसन आगे चलकर उनकी जर्नी की शुरुआत बनने वाला था। क्या था वो मोमेंट, कैसे एक साइंटिस्ट बनने की जर्नी शुरू हुई और लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो वैल्यू मनी को बिजनेस की तरफ लेके आया, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास कापे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड और हम बात कर रहे हैं ए वैल्यू मनी के बारे में। ए वैल्यू मनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और किस तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो घंटों तक पढ़ते रहे, लेकिन असली टेस्ट तो शुरू होता है जब पढ़ाई खत्म हो जाती है और लाइफ में करियर स्टार्ट करने का टाइम आता है। वैल्यू मनी की कहानी में भी यही फेज आया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कोयम्बटूर की एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू की। अब सैलरी सुनिए, सिर्फ 150 रुपए महीना। आज के वक्त में शायद ये बहुत छोटा अमाउंट लगे, लेकिन उस टाइम ये कोई बड़ी सैलरी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वैल्यू मनी अपनी सैलरी में से 100 रुपए हर महीने अपनी माँ को भेज देते थे और बाकी 50 रुपए में पूरा खुद का महीना मैनेज करते थे। इमेजिन कीजिए, 50 रुपए में पूरा महीना। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक ये कंपनी बंद हो गई और वैल्यू मनी बेरोजगार हो गए। अब सिचुएशन फिर वही थी, अनसर्टेनिटी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक प्रॉब्लम के रूप में आती है। वैल्यू मनी ने हार नहीं मानी, इन्होंने अप्लाई किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था BARC में काम करते हुए। इन्होंने सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि अपनी हायर स्टडीज भी पूरी की। धीरे धीरे चलकर रिसर्च फील्ड में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और आगे चलकर वो साइंटिस्ट बन गए। लगभग 14 साल तक इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम किया। एक स्टेबल जॉब, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन, कई लोग यहीं सेटल हो जाते। लेकिन वैल्यू मनी के माइंड में कहीं ना कहीं एक थॉट बार बार आता था, क्या मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता हूँ? और यही थॉट धीरे धीरे ड्रीम बन गया। लेकिन ड्रीम को रियलिटी में बदलना आसान नहीं था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है रिस्क, करेज और सपोर्ट। और वैल्यू मनी की लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट था जिसने उस ड्रीम को रियलिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो सपोर्ट था उनकी वाइफ का। कौन थी वो और कैसे इन्होंने वैल्यू मनी के साथ मिलकर एक छोटी सी लैब से एक बड़ी कंपनी की फाउंडेशन रखी, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाने के बाद। गाने के बाद हम फिर से लौटेंगे, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ ए वैल्यू मनी की जर्नी के बारे में। कैसे इन्होंने साइंटिस्ट के तौर पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगभग 14 साल तक काम किया, एक स्टेबल जॉब, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, लाइफ आराम से चल सकती थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कम्फर्ट जोन में रहना पसंद नहीं होता। वैल्यू मनी के माइंड में भी एक थॉट बार बार आता था, कुछ अपना करना है, समथिंग ऑफ माई ओन। और आखिरकार 1995 में इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी सेविंग से एक छोटी सी लैब शुरू की। ये पैसा भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लगभग 1 लाख, जो उनके पीएफ से आया था, और यहीं से शुरू हुई थायरोकैट टेक्नोलॉजीज की जर्नी। लेकिन शुरुआत भी आसान नहीं थी, उनकी लैब मुंबई में थी और शुरू के दिनों में सिर्फ रोज 2 सैंपल्स आते थे। यस, सिर्फ 2 सैंपल्स अ डे। कई लोग ऐसे मोमेंट पर शायद हार मान लेते हैं, लेकिन वैल्यू मनी ने पेशेंस नहीं छोड़ा। उनका विजन बहुत क्लियर था, डायग्नोस्टिक टेस्ट को अफोर्डेबल बनाना ताकि आम लोग भी आसानी से मेडिकल टेस्ट करवा सकें। धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल डेवलप किया, कम कॉस्ट, हाई वॉल्यूम और वाइडर रीच। और यहीं पर उनकी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी था। जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो उनकी वाइफ सुमति वैल्यू मनी ने SBI की अपनी जॉब छोड़ दी और कंपनी में भी उनका साथ दिया। वो सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं थी बल्कि कंपनी की फर्स्ट एम्प्लॉय भी थी। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, धीरे धीरे लैब्स बढ़ने लगी, सैंपल कलेक्शन

सेंटर बनने लगे और थायरोकेयर का नेटवर्क एक्सपेंड होने लगा। आज थायरोकेयर के 950 से ज्यादा ब्रांडेड आउटलेट्स और 5000 से ज्यादा नॉन ब्रांडेड आउटलेट्स हैं और इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ है। आज कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6600 करोड़ के आसपास है। लेकिन सक्सेस की इस जर्नी में एक ऐसा मोमेंट भी आया जो शायद बहुत इमोशनल था। 2016 में थायरोकेयर का IPO आने वाला था। ये वेलुमनी के करियर का बहुत बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन उसी समय वाइफ सुमति वेलुमनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। 12 फरवरी 2016 को वो दुनिया से अलविदा कह गई और कुछ ही महीनों बाद कंपनी का IPO लॉन्च हुआ जो लगभग 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। वेलुमनी अक्सर कहते हैं, मेरी अर्ली लाइफ की इंस्पिरेशन मेरी माँ थी और मेरी बिजनेस सक्सेस की वजह मेरी पत्नी थी। उनकी जर्नी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है, सक्सेस हमेशा बड़े रिसोर्सेज से नहीं आती, कभी कभी सक्सेस सिर्फ फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस से आती है। और शायद इसीलिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ने वाला लड़का आज हजारों करोड़ की कंपनी का फाउंडर बन गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और याद रखिए, ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का करेज बड़ा होना चाहिए। टेक केयर एंड कीप ड्रीमिंग बिग और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने, बाका मा, बोले आधी,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

माता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके साथ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: काफी स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या कभी सोचा है कि कुछ चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हम उनकी वैल्यू समझ नहीं पाते। ना उसका कोई एड आता है, ना कोई सेलिब्रिटी उसे प्रमोट करता है, ना वो किसी फैंसी कैफे के मेन्यू में लिखा होता है, पर फिर भी वो गर्मी से लड़ता है, भूख से लड़ता है और थकान से भी लड़ता है और चुपचाप अपना काम करता रहता है। वो कहा है कि ना शोर है ना शो है, ना कोई पैकेजिंग का जोर है, जो सच में काम आए वही असली पावर है। 89.6 FM पर मैं हूँ आर जे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी देसी हीरो की जो दिखता सिंपल है पर अंदर से सॉलिड है, जिसे कहा जाता है सत्तू। तो चलिए फिर आइए जानते हैं आखिर सत्तू है क्या। सत्तू सिर्फ एक पाउडर नहीं है, ये भुने हुए चने या जौ का आटा होता है जिसे पीस कर बनाया जाता है, पर असली बात सिर्फ इतनी नहीं, ये हर रोज की जिंदगी का हिस्सा है। फिर चाहे बात करें बिहार झारखंड और यूपी के घरों में, सुबह घर से निकलते वक्त एक ग्लास सत्तू पीना मतलब दिन भर की एनर्जी रेडी, ना फ्रिज की जरूरत ना गैस की, बस पानी सत्तू और जिंदगी चल पड़ी। जहाँ सिंप्लिसिटी होती है वही सस्टेनेबिलिटी होती है, ये सब सिखाया हमें सत्तू ने। और भी बहुत सारी चीजें हैं सत्तू से जुड़ी हुई, जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर एल्बम। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं सत्तू की। तो आइए चलिए जानते हैं सत्तू का इतिहास, सफर और जय। अब सोचिएगा जरा, जब ना प्रोटीन बार्स थे ना पैक्ड फूड था, तब लंबी यात्रा पर जाने वाले लोग क्या ले जाते थे? जवाब है सत्तू। पुराने दौर में सैनिक और यात्री अपने साथ सत्तू रखते थे, क्योंकि हल्का था, जल्दी बन जाता था और सबसे जरूरी लंबे समय तक एनर्जी देता था। यानी एक मुट्ठी सत्तू और आदमी घंटों तक चल सकता था इसे पीकर। वो कहा है कि सफर लंबा हो या रास्ता कठिन, साथ अगर सत्तू हो तो डर कैसा, जो मिट्टी से ताकत ले उसका हौसला कम कैसा। तो आइए चलिए जानते हैं सत्तू के पीछे की साइंस। आखिर क्यों कहा जाता है इसे देसी सुपर फूड? अगर बात करें आज के जमाने में लोग प्रोटीन शेक्स पे हजारों खर्च करते हैं, पर सत्तू में ऑलरेडी होता है हाई प्रोटीन, फाइबर, आयरन और साथ ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी ये बॉडी को इंस्टेंट नहीं लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी देता है। और जब इसमें नींबू, जीरा, नमक मिलता है तो ये सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक एनर्जी ड्रिंक बन जाता है। जो चीज मिट्टी से मिले वो बॉडी को कभी चीट नहीं करती। जब बात सत्तू की कर ही रहे हैं, इसके पीछे का साइंस भी जाना, तो वापस आकर जाएंगे टेस्ट का देसी कैनवस क्यों कहा जाता है इसे। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ चलिए बात करते हैं आके सत्तू को टेस्ट का देसी कैनवस क्यों कहा जाता है। सत्तू एक ही नहीं होता, उसके फ्लेवर भी कहानियां लेकर आते हैं, जैसे नमकीन सत्तू यानी प्याज नींबू हरी मिर्च के साथ, मीठा सत्तू गुड़िया चीनी के साथ, और लिट्टी चोखा के अंदर भरा हुआ सत्तू, पूरा बिहार एक बाइट में। हर घर का अपना स्टाइल, हर घर का अपना स्वैग, हर ग्लास का अपना इमेज। वो कहा है कि एक ही सत्तू के कितने रूप निकल आए, जैसे एक ही जिंदगी के कितने धूप छाप निकल आए। अब अगर सत्तू की बात करें तो आइए जानते हैं गरीबी नहीं विजडम क्यों कहा जाता है इसे। एक वक्त था जब लोग सत्तू को गरीब का खाना कहकर इग्नोर करते थे, और आज न्यूट्रिशनिस्ट इसे सुपर फूड बोलते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले लोग इसे समझते थे, अब लोग इसे रिसर्च कर रहे। वो कहा है कि जो कल तक नजरअंदाज था आज वही ट्रेंड बन गया। सत्तू ने सिखा दिया असली सोना कभी पुराना नहीं होता। जब बात कर रहे हैं सुपर फूड की, तो वापस आकर जानेंगे आज के जमाने में कैसे मॉडर्न कमबैक किया सत्तू ने। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज की कहानी हमें सत्तू के बारे में बहुत कुछ बता रही है। तो आइए चलिए जानते हैं आज के जमाने में कैसे मॉडर्न कमबैक किया सत्तू। आज के कैफेज में सत्तू स्मूदीज, प्रोटीन ड्रिंक्स, डिटॉक्स मिक्सचर, देसी चीज ग्लोबल हो रही है, पर जो असली मजा है वो मिट्टी के ग्लास में घर के आंगन में पंखे के नीचे बैठकर धीरे धीरे पीने में है।

मिट्टी की ताकत महसूस हो जाए। और इसी के साथ कल्चर कारवा में आज हमने बात की सत्तू की। कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ, एक नई याद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजी अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कुछ चेहरे फिल्मों में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो एक दौर बन जाते हैं। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

जिंदगी है। और आज का एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि आज की शाम डेडिकेटेड है उस एक्ट्रेस को जिनकी सिंप्लिसिटी भी ऑडियंस को पसंद आई, रोमांस भी, इमोशंस भी और ग्लैमर भी। जी हाँ, आज का एपिसोड है अमीषा पटेल स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं उस फिल्म से जहाँ एक तरफ सलमान का स्वैग था और दूसरी तरफ कॉमेडी और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स। मैं बात कर रही हूँ ये है जलवा मूवी की,

और अगर इस मूवी के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल फैमिली नंबर वन रखा गया था और फिल्म में एक इंटरेस्टिंग मेटा रेफरेंस भी था, जहां सलमान अनुपम खेर से पूछते हैं कि उनका शो सवाल 10 करोड़ का क्यों बंद हो गया, जो रियल लाइफ में कौन बनेगा करोड़पति का राइवल शो था। और अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो एक पुरानी फैमिली फोटो भी नजर आती है इस मूवी में, लेकिन वो स्पेशली इस फिल्म के लिए क्लिक ही नहीं हुई थी, बल्कि 1982 की फिल्म ये वादा रहा से ली गई थी। और एक और हिडन डिटेल है इस मूवी की, वो ये है कि फिल्म हॉलीवुड मूवी कार्बन कॉपी से इंस्पायर्ड मानी जाती है। साथ ही ये वो वक्त था जब सलमान हेयर ट्रीटमेंट फेज में थे और इस फिल्म में उनका ओरिजिनल हेयर लुक लास्ट टाइम ऑडियंस को देखने को मिला। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनते हैं इस मूवी से ओ जाने जिगर गाना। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसने एक नहीं दो स्टार्स को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया, जिसका एक डांस स्टेप आज भी लोग रिक्रिएट करते हैं। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, तब तक के लिए ये गाना आपके लिए। हाँ।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि एक ऐसी फिल्म के बारे में बात होगी जहाँ पर एक नहीं दो स्टार्स को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया गया, वो मूवी और कोई नहीं कहो ना प्यार है।

और इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फिनोमिनन था। और इस मूवी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट था एक पल का जीना है गाना में, क्योंकि ये गाना पहले से कोरियोग्राफी नहीं किया गया था, शूट के वक्त ही ऋतिक रोशन और फराह ने मिलकर क्रिएट किया था। और इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में राज की मदर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जो थी वो रियल लाइफ में अमीषा पटेल की एक्चुअल मदर थी। और साथ ही साथ अगर इनिशियली लीड रोल की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि सबसे पहले करीना कपूर कास्ट हुई थी इस मूवी के लिए, लेकिन कास्टिंग के दौरान इनकी आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिर एंट्री हुई अमीषा पटेल की, जो कि बाद में ओवरनाइट स्टार बन गई। इतना ही नहीं, एक ट्रैफिक सिग्नल वाला आइकॉनिक सीन आता है जहां राज और सोनिया पहली बार मिलते हैं। वो एक्चुअली में ऋतिक रोशन की रियल लाइफ लव स्टोरी से इंस्पायर्ड था। और इस फिल्म की सक्सेस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं रही। ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी कि डायरेक्टर राकेश रोशन को अंडरवर्ल्ड थ्रेट्स तक फेस करने पड़े। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में कहो ना प्यार है गाना। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसी फिल्म की जिसके डायलॉग्स भी आइकॉनिक बने, सॉन्ग्स भी, और एक हैंड पंप ने तो हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
5: अरे आगे भी बोलना।
4: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
4: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आपके साथ।
1: अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आपको कभी इतना गुस्सा आया है कि आपने गुस्से में एक हैंड पंप भी उखाड़ दिया हो? जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रही हूं, क्योंकि अब जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी में ये सीन हम सभी ने देखा है, और वो मूवी और कोई नहीं गदर एक प्रेम कथा है।
2: ये छोटी सी जिंदगी तेरा का लंबिया लंबिया तो घर आजा परदेसी।
0: ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये इमोशंस पैट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस का कॉम्बिनेशन थी। और इस मूवी में ऑथेंटिसिटी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि शूटिंग के लिए दिल्ली रेलवे म्यूजियम से रियल स्टीम इंजन हायर किया गया इस मूवी को रियल टच देने के लिए। और ये फिल्म लगान के साथ सेम डे पर रिलीज करी गई थी, और लोगों को ये लगा था कि ये क्लैश रिस्की हो सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन दोनों फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और अगर हम तारा सिंह की बात करें यानी कि सनी देओल की बात करें, तो हैंडपंप वाला सीन ओरिजिनल एक दूसरी फिल्म के एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर्ड था, लेकिन बाद में वही सीन तारा सिंह यानी कि सनी देओल की आइडेंटिटी बन गया। और इस फिल्म की रियल इंस्पिरेशन बूटा सिंह और जेनाब की ट्रू स्टोरी थी, जहां पार्टीशन के वक्त एक सिख सोल्जर को एक दूसरे देश की लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन रियल स्टोरी की एंडिंग उतनी हैप्पी नहीं थी जितनी फिल्म में दिखाई गई। अब इस फिल्म की इतनी बात हो ही रही है, तो चलिए सुनते हैं इस मूवी से ये गाना, मैं निकला ओ गड्डी लेके। और इस गाने के बाद बात होगी अमीषा पटेल की एक बिल्कुल डिफरेंट रोल की, जहां ऑडियंस ने उन्हें पहली बार ग्रे शेड में देखा। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो
0: बाय।
1: मीठे लस्सी तो पीता हूं।
2: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: हेलमेट और सीट बेल्ट पुलिस के लिए नहीं अपने आप के लिए और अपनों के लिए पहने। फोन को साइड पर रखें, रोड पर फोकस करें।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि अमीषा पटेल को देखा गया पहली बार ग्रे शेड में, और वो मूवी थी शॉर्टकट रोमियो।

और अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये फिल्म अमीषा पटेल के करियर के लिए काफी डिफरेंट थी, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार उन्होंने एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर प्ले किया था और उन्होंने खुद कहा था कि ये रोल मेंटली और इमोशनली काफी एग्जॉस्टिंग था। और इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये है कि फिल्म डायरेक्टर की खुद की तमिल हिट फिल्म थी जो कि हिंदी रीमेक की गई, और साथ ही साथ मोनिका के रोल के लिए पहले विपाशा बासु और दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया था, लेकिन इवेंचुअली ये रोल अमीषा पटेल को मिला। अगेन डेस्टिनी का खेल। तो चलिए, इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं इस मूवी का खाली सलाम दुआ गाना। और इसी खूबसूरत गाने के साथ अब वक्त हो चला है मेरे जाने का। उम्मीद करती हूँ आज का ये अमीषा पटेल स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीकेंड कुछ नए गानों और उनके पीछे छुपी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक म्यूजिक को फील करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, किसी की बातें ध्यान से सुनना उसकी सबसे आसान हेल्प है। तो आज से ही सुनो पर जज मत करो।
2: चाहता हूँ कभी ना बीते चमकीले दिन।
3: यार, कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
0: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
6: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: जॉनी जॉनी
1: यस पापा
0: बाइक चलाना है यस पापा हेलमेट पहनना है ओके पापा हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे नो पापा यू आर वेरी गुड बच्चा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बना है दूरी आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, फोन साइड रखो और बातों पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस भी किसी का सपोर्ट है।
2: तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आज से वेरीफाई करके ही लिंक्स और फाइल्स ओपन करें, बिकॉज वन क्लिक चेंजेस योर होल लाइफ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो बातें हम नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो हम किसी नज्म में लिख देते हैं, किसी कविता में लिख देते हैं। और शायद इसीलिए हर कविता सिर्फ लिखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। तो आज दिल शायराना में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मेरे साथ काफी सारे जो कवि हैं वो मौजूद हैं, कवित्री मौजूद हैं। मेरे साथ अनिका जी हैं, आलोक जी हैं, स्मिता सिंह चौहान जी हैं, स्वाति जी हैं और जय सिंह जीत जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा सभी से है, ये सवाल है कि लिखना जो था वो आपकी चॉइस था या जरूरत है? और
6: मजबूरी
4: क्यों? बट
6: बिकॉज हर एक शायर शायरी शौक से नहीं लिखता, बजाय इसके कि वो किसी से वो अपनी बातें कहे वो लिखना ज्यादा जरूरी समझता है, तो वो मजबूरी धीरे धीरे उसका शौक बन जाती है। और जब मजबूरी शौक में बदलती है तभी बड़ा शायर बनता है।
4: क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात कह दी आपने। अनिका जी, आपसे भी इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी।
5: जी बिल्कुल सही कहा सर ने, लिखना एक वो होता है जब हम किसी से कुछ कह नहीं पाते। आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिससे आप अपनी जिंदगी की कहानी रख सके, उसको फिर हम गजल, नज्म, शायरी, किताब जैसे शब्दों में पिरो के ऑफर लोगों के आगे रखते हैं।
4: जी।
5: लोग वो सुन लेते हैं पर दर्द नहीं सुन पाते
4: हैं।
5: तो इसलिए ये सही बात है, बिल्कुल आप मजबूर हैं तभी कुछ लिख रहे हैं।
4: बट
5: हाँ, शौक भी है क्योंकि जब तक आपको कहते हैं ना शायर पैदा होते हैं बने ते नहीं है, दिल तो सभी के टूटते हैं पर सब लिखते भी नहीं है। तो हम लिख पा रहे हैं, ये कृपा है ऊपर वाले की हम पे।
4: स्वाति जी
7: बिल्कुल मैम और सर ने बहुत अच्छे से बोला और अच्छे बताए। जैसे आजकल की मतलब मैं समझ पाती हूँ आजकल की जो दुनिया है ना उसके सामने आप कुछ कहने जाओ तो वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो आप पे उल्टा रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर आप उसे शब्दों के साथ उनको रखते हो समाज में तो सब कोई सुन लेता है, कहीं ना कहीं वो आपकी एक सच्चाई ही होती है। जो प्रॉपर आप किसी के सामने रखोगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप वही अब शब्दों में पिरो देते हो, समाज के सामने रखने लगते हो तो वो एक अच्छा निर्देश की तरह लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो होता है कि हम जो नहीं कह पाते समाज में उसे अपने शब्द के माध्यम से पहुंचाते हैं
4: जी,
7: और एक लिखना बाद में वही शौक बन जाता है
4: जी। स्मिता जी आपके पास आते हैं।
8: मेरे लिए तो लिखना जो है वो मौन को आवाज देना है, और वो मौन कोई भी हो सकता है, चाहे वो इस पृथ्वी में चिड़िया का मौन हो, चाहे वो जानवरों का है, जंगलों का है, अपना मौन हो, या फिर किसी समाज की ऐसी समस्या का मौन हो जिसमें कोई कुछ नहीं बोल पाता तो कवि बोल देता है। तो मेरे लिए वो एक आवाज है कि मौन को आपने आवाज दी है, और इस पर आपको इस पे ना गर्व होना चाहिए क्योंकि ये आवाज सबके पास नहीं होती है। किसी के मौन को आवाज देना सबके बस की बात नहीं है, और हम कभी ऐसा कर पाते हैं ये मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरी मजबूरी होती है या मैं मजबूरी से लिखती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो चीज कोई इस पृथ्वी पे बोल नहीं पाएगा ना, और अगर मैंने वो नोटिस की है और मुझ में ये हुनर है तो मैं उसे आवाज जरूर दूंगी।
4: क्या बात है। सर आपके पास आते हैं, जय सिंह जी आप क्या कहेंगे इस बारे में?
9: जी गीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं बहुत बचपन से कविताएं सुनता था जी, कवि सम्मेलनों में जाता था।
4: हाँ।
9: कब सुनते सुनते मैं कवि बन गया मुझे सच में पता ही नहीं चला। और अब मेरा उद्देश्य है कि कुछ अच्छा पेश किया जाए। जैसे प्यार को हवस ना करके प्यार ही रखा जाए, मैं इस प्रयास में लगा हूँ।
4: क्या बात है। और ये जैसे आपने कहा कि मैं बस बन गया, तो कभी कभी इत्तेफाक भी अच्छे होते हैं।

0: कवि का ना एक अलग मूड होता है लिखने का, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, स्मिता जी आपसे ही पूछते हैं ये सवाल, ये जो इमोशंस हैं ये कहाँ से पैदा होते हैं?
1: इमोशंस तो पैदा कैसे होंगे, आप देखेंगे जी कि अगर मेरे तो इमोशन ऐसे भी पैदा हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने हाल ही में कविता चिड़िया पे लिखी थी, मैं उसे दाना ही दे रही थी, पर मैं ये सोच रही थी कि कई लोग देते होंगे दाना, पर मेरे कवि मन में ये आया कि ये दाना जो है ना मेरा उस पर कोई एहसान नहीं है, ये मेरी झिझक है जो जंगल में काट के हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उसकी शायद कहीं झिझक कोई शर्मिंदगी मैं मिटाना चाह रही हूँ और इसलिए मैं इसे देती हूँ। तो उसी पर वो एक इमोशन आया और मैं लिखने बैठी और बन गई कविता। ऐसे ही जैसे अभी मदर्स डे था तो 80s 90s की जो माएं हैं जो अपनी बात कभी कह ही नहीं पाती थी, उन्होंने सबसे ज्यादा सहा है, ठीक है। तो अभी मेरी माँ बहरीन से आई थी, आपको पता है वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त युद्ध का, तो वो बहरीन से आई तो मैं उन्हें देख रही थी क्योंकि वो एक ट्रॉमा में थी। तो जब मैंने उन्हें देखी तो मुझे लगा कि इनका जो अंदर का जो ट्रॉमा युद्ध को देख के पैदा हुआ ना वो सिर्फ वो नहीं था, वो उनकी वो कहानी भी है जो पिछली रह गई, क्योंकि वो उसी चीज पे कह रही थी कि हमने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा और अब हम ये भी देख रहे हैं। तो वहां से इमोशन आ गया। इमोशन को आप बांध नहीं सकते, वो एक ऐसा समंदर है आपके अंदर, वो कहीं से भी आप पे उफन सकता है, कहीं से भी सुनामी ला सकता है। तो मेरे लिए तो इमोशन यही है
0: जी। क्या बात है सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे एक सवाल है। हम अगर बात करें हमारे हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो समाज को आईना दिखाने का काम किया करते थे, तो क्या लगता है आज के समय जो कविताएं लिखी जा रही हैं समाज को आईना दिखा रही हैं?
2: जी, आज की कविताएं आज के हिसाब से आईना दिखा रही हैं, और उस वक्त जो परिस्थितियां थी प्रेमचंद जी के समय में उन्होंने उन परिस्थितियों को यथार्थ बनाकर लिखा, उस वक्त भी बहुत पसंद की जा रही थी
0: जी।
2: और आजकल के कवि भी किसी टॉपिक को पकड़कर बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात। आज जो जरूरतें हैं कवि बखूबी उसको निभा रहे हैं, लिख रहे हैं
0: जी। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आज जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फेम के लिए भी लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए?
2: सभी तो नहीं होंगे,
0: सभी नहीं है,
2: सभी नहीं होंगे
0: जी, जी।
2: कुछ लोग वास्तव में अपने अंदर की तड़प को प्रस्तुत कर रहे हैं
0: जी,
2: ऐसे बहुत है।

0: मालिका जी आपके पास आती हूँ। स्टेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है और आप मंच की कवित्री हैं, तो आप बहुत ही बखूबी ये बात जानती हैं, जहाँ लोग सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि रिएक्ट भी करते हैं, अपने इमोशंस भी दिखाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इफेक्ट हुई हो, आप जो सोच कर गई हो एग्जैक्ट वो परफॉर्म ना कर पाई हो? ऐसा
1: वो अक्सर हर बार यही होता है।
0: अच्छा, हर बार होता है,
1: सबके साथ होता होगा शायद। हम अपने अंदर से कुछ पैरामीटर्स लेके चलते हैं कि हम ये पढ़ेंगे। पब्लिक डिपेंड करता है कि आप यूथ के जेंजी हैं तो क्या हमें प्रस्तुत करना है, आप थोड़े बुजुर्ग हैं, शायराना मतलब प्रॉपर उस्ताद लोग हैं, तो हम क्या करेंगे उर्दू मुशायरे में। तो वो डिपेंड पब्लिक पर ही करता है कि आप कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले भी लोग पढ़ रहे होते हैं
0: जी।
1: उतना भी जजमेंट हो जाता है कि वो लोग कैसे सुन रहे हैं। अगर नहीं तो फिर चेंज करते हैं सेम टाइम पर, लेकर तो हम एक्स्ट्रा ही जाते हैं
0: जी। जी आलोक यादव जशनूर जी आपके पास आती हूँ और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। बात करेंगे जॉन इलिया साहब के बारे में, बिकॉज आजकल तो लोग मुझे लगता है कि जो पोइट्री के दीवाने नहीं है वो भी जानते हैं। देखिए जॉन इलिया साहब को इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पर लोग सुन रहे हैं जिनको समझ नहीं आता, इनफैक्ट वो भी सुन रहे हैं, तो खैर अच्छी बात है ये। बट जॉन इलिया साहब जो बिना किसी फिल्टर के लिखा करते थे, आपको क्या लगता है आज के जमाने में भी जो कवि हैं वो बिना फिल्टर के लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं फिल्टर आ गए हैं पोएट्री में भी?
2: जी, ये मेरे हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एंड मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे नोन है वो, जो कि विदाउट एनी फिल्टर से लिख रहे हैं।
0: ओके,
2: एंड करंट सिचुएशन मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगा कि उन लोगों का जो बोलने का तरीका है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, लाइक एक नाम है अनंत गुप्ता करके हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो सीरियसली ऐसा लगता है कि उनकी वाणी में, बोलने में, उनके एक प्रवाह जो उनका चलता है बोलने का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का फिल्टर नहीं है। कुछ लोग रखते हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे अपनी मर्यादा में बोलना है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोग फिल्टर लगा सकते हैं, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है।
0: एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप कैसे डिसाइड करते हैं क्या आपको पब्लिक को सुनाना है, क्या उनसे छुपाना है?
2: मैं कभी कोई भी चीज कभी सोच के नहीं लिखता, मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करता हूँ। So, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हमेशा उस चीज के लिए तैयार होके ही लिख रहा हूँ कि मैं किसी को भी ये चीज सुना सकता हूँ किसी भी मंच।

0: स्वाति जी आपके पास आते हैं। देखो मुझे नाम याद हो गया है
1: बहुत अच्छा
0: जी। एक वक्त था जब शायरी सिर्फ महसूस की जाती थी, अब रिकॉर्ड भी होती है, इनफैक्ट वायरल भी होती है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने पोएट्री को ज्यादा पावरफुल बनाया है या कहीं ना कहीं पोएट्री और ये लिटरेचर पीछे छूट गया है इसके वजह से?
1: बिल्कुल नहीं। पहले नंबर तो सोशल मीडिया के जरिए आज जहाँ नहीं जाना चाहिए पोएट्री वहाँ तक पहुँच रही है। हम गांव तक भी इसको ले जा रहे हैं। जो पोएट्री शब्द है उसको कोई जानता नहीं था गांव में, आज गांव में भी जो है वो सुनना चाह रहे हैं
0: जी।
1: और पोएट्री एक ऐसा माध्यम है जिससे मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, उसको भी ले जाया जा रहा है। तो मैं तो पोएट्री को ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा है। जो पहले था वो भी अच्छा था उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से जो है वो भी अच्छा है
0: जी। स्मिता जी
1: जी,
0: बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, तो आपके हिसाब से एक अच्छी कविता की पहचान क्या होती है?
2: मेरे हिसाब से देखिए कविता अच्छी बुरी तो नहीं होती, कविता कविता होती है। और जहाँ तक कनेक्शन का सवाल है कि हम लोगों से कनेक्ट आप तब हो पाते हैं जब आप बहुत सरल साधारण तरीके से अपनी बात को कह पाते हैं, जिसमें दूसरा ये समझे कि अरे ये तो मेरा ही दर्द था जो उसने बोल दिया, है ना। लेकिन बहुत क्लिष्ट अगर आप शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा कि जैसे आजकल एक जो आपने भी सोशल मीडिया वाली बात की कि सोशल मीडिया में ना एक होड़ लगी हुई है कि हम कैसे किससे आगे जाना चाहते हैं उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तकनीक को जब बीच में डाल रहे हैं। ये चीज मैं इसलिए यहाँ पे बोल सकती हूँ क्योंकि अभी कुछ नए नए पोएट भी मैंने देखे हैं जहाँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो गया।
0: मैं यही बोलने वाली थी। Exactly.
2: तो वो जब आते हैं ना तो आप वो कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज तकनीक आपके भाव नहीं ला पाएगी, तकनीकी चीजें सरलता नहीं ला पाएंगी, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग वाकई लिख रहे हैं, लिखते हैं, चाहे वो चार लाइनें लिखें, दो लाइनें लिखें, पर वो जब भी बोलेंगे ना तो वो कनेक्ट होगा और होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं होते
0: जी। सर आपके पास आना चाहूंगी। जय सिंह जी, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे इस बारे में कि आपको लिखने से पहले एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कविताओं की बात कहूँ, अगर जैसे मैं बात करती हूँ सिंगिंग की या किसी और अदर आर्ट की, तो वहाँ लोग अपना मेंटोर चुनते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कविता के क्षेत्र में ये चीज उतनी नहीं है, उतना मेंटोर नहीं है, वो सिखाने वाले नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप?
3: जब कोई फील्ड में आता है इसमें कविता के फील्ड में तो हो सकता है कि वो बगैर किसी गुरु के आ जाए। लेकिन यदि आने के बाद वो गुरु को ढूंढ कर लिखता है तो बहुत अच्छा लिखता है।
0: क्या बात है?
3: वो एक बहर में चल सकता है, एक पूरी परंपरा में चल सकता है। और मेरे हिसाब से हमें गुरु तो बनाना चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस को भली भांति पेश कर सके।
0: जैसे आपने बात की बहर की, आजकल लोग मोस्टली मीटर में नहीं लिख रहे हैं, छंद मुक्त ही लिखते हैं, तो क्या लगता है मीटर है उसका भी? अच्छा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक कवि से पूछा था, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने कहा जो मीटर में ना हो उसे आप ख्याल कह सकते हैं, आप उसे, हाँ आप उसे गजल नहीं कह सकते।
4: गजल नहीं।
0: तो ये जो लिख रहे हैं लोग इस तरीके का जो कंटेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
3: मैं ये मानता हूँ, मान ले इमोशंस अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा आए हुए किसी विषय के ऊपर, उस वक्त वो मीटर की तरफ जाएगा तो इमोशंस या तो खत्म हो जाएंगे या आधे हो जाएंगे,
0: बंद जाएंगे।
3: लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंस है मीटर्स का तो हम मतलब अपनी बात को ढंग से कह भी सकते हैं, ऐसा भी मुनासिब है, मुश्किल भी नहीं है
0: जी जी।
3: लेकिन उसके लिए एक एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है
0: जी जी। तो किन किन कवियों को पढ़ सकते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है? बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी ऐसे ना लिखा जाए, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ के आए। तो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे?
3: डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं, सुनील जोगी हैं, राजेंद्र चौहान हैं, और बहुत ऐसे और भी कवि लिखते हैं, और जैसे कुमार विश्वास जी हैं
4: उनकी तो बात ही अलग है,
3: और सबीना अदीब जी हैं, बहुत गहरा लिखती हैं। जो जितना ज्यादा सुनेगा गीत जी वो उतना अच्छा लिखेगा, मैं ये मानता हूँ।
4: सुनना पढ़ना जरूरी,
1: सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है।
0: अनिका जी, आपसे भी यही सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल ही है, अगर आज की यंग जनरेशन पोएट्री लिखना स्टार्ट कर रही है तो उन्हें सबसे पहले क्या चीजें सीखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
4: कि ख्याल तो कुछ भी हो सकता है किसी का, और जैसे कि बहर पैरामीटर की बात चल रही थी, तो पानी जब बिना मर्यादा के है तो कैसा है? मर्यादा मर्यादित है बहर पैरामीटर, आप जब मर्यादा में बहते हैं, नल के थ्रू जा रहा है तो सुविधाजनक है, बिना उसके उबाड़ भी ला सकते हैं शब्द, तो पैरामीटर तो पहले इसलिए भी जरूरी है। और पढ़ने के लिए कुछ भी भाव आपकी जिंदगी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम मैं दर्द लिखती हूँ, कुछ मोहब्बत लिखते हैं, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छे अच्छे जो भी आपसे पढ़, आप साथ जैसे अब अभी हम जुड़े हैं, आपसे सीखने को मिलेगा, बड़े लोगों से सीखने को मिलता है, सबकी संगत में रहें। हर किसी राइटर को पढ़ना और सुनना ज्यादा जरूरी है आपको एक अच्छी चीज करने के लिए।
0: जी जी,
4: बहुत जरूरी है। आप जब तक, जैसे कि जॉन इलिया की बात की आपने, जॉन इलिया, प्रवीण शाकिर जी, शबीना अदीब जी, अंजुम रहबर जी, बड़े बड़े नाम, कुमार विश्वास, जैसे मैं तो फैन हूँ, बिग फैन ऑफ कुमार विश्वास, उनकी वजह से ही आज मैं लिख रही हूँ शायद। तो ऐसे नामों को आपको जरूरी है, जैसे कोई पूछता है कि क्यों लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस वो शायरी सुन ली थी उनके, उसके बाद लगा यही करना है। तो वो नाम जरूरी है और पैरामीटर बहुत जरूरी है।

0: जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं आज दिल शायराना को, वो सोच रहे होंगे कि मेन मुद्दे पर आ जाए, इतने सारे जब कवि और कवित्री जुड़े हैं तो उनकी रचनाएं ना हो तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अब हम सीधा रचनाओं पे बढ़ते हैं, तो सबसे ये सेम सवाल है आपसे शुरुआत करते हैं अनिका
1: जी, बताएं मैम
0: क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक या मंच की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई एक सच्ची लाइन?
1: सच्ची लाइन को ही मंच पे ले जा रही हूँ मैं पहले अकेले में लिखती हूँ और फिर मंच तक जाना मुझे उसके लिए अच्छा लगता है।
0: एक कवि जो होते हैं अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा के
1: बात कही आपने, आपको अकेले कमरे में लिखना पसंद है या फिर सबके सामने ले जाना? तो अकेले कमरे में लिख के सामने ले जाना।
0: तो क्या ऐसा लिखा था जिसपे बहुत तालियां मिली हो और बहुत
1: मैम तालियां मिली? वो तो अभी थोड़े दिन के लिए गुप्त रख रही हूँ, वायरल भी गया।

0: खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आलोक जी आपके पास आते हैं, आपसे भी सेम सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
1: मुझे, मैं जिस विधा में लिखता हूँ वो अक्सर यही इश्क मोहब्बत प्यार या कह सकते हैं मनमसीहत। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ये भी बोला था कि मजबूरी है, और फिर मैम ने उसको इतनी अच्छी तरह क्लेरिफाई किया ये बात मैम की, जो मैं बहुत अच्छी लगी, वहां से मैं, यहां से मैं उस चीज को लेके जाऊंगा अपने साथ और अपना नजरिया बदलने की कोशिश करूंगा मैं।
0: बहुत बढ़िया। तो क्या आपको एग्जैक्टली क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक की तालियां या सच्ची लाइन अकेले कमरे में बैठी?
1: मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो एक अच्छे श्रोता हूँ, वो उन्हें सुनना आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वक्ता जब माइक पर कुछ भी बोल रहा होता है तो उसके सामने जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं उसकी परफॉर्मेंस में।
0: एग्जैक्टली, हम बहुत अच्छे श्रोता हैं और हम वेट कर रहे हैं आपकी रचना का, कि जल्दी से कोई रचना आए हमारे सामने और हमारे लिसनर्स के।
1: आपने जो तालियों की बात करी थी, ये एक ऐसा ख्याल है, मुझे बहर की जानकारी नहीं है, मैं हमेशा बहर से बाहर ही रहता हूँ।
0: अच्छा जी।
1: और ये एक ऐसा ख्याल है जिसपे मैंने जो सोचा था वो मैं एक बार कर चुका हूँ कि टोटल ऑडियंस वॉज साइलेंट। मैं अर्ज करता हूँ, मैं ऐसे सबको खुश रख रहा हूँ जैसे मैं खुद खुश रहना भूल रहा हूँ। मुझे इल्म नहीं है किसी की बेरुखी का, मैं तो खुद की बेरुखी से मर रहा हूँ।
2: क्या बात है, क्या ख्याल है,
3: बहुत बढ़िया।
1: शेर, तेरी गोद में सर रख कर फिर कभी रोऊंगा माँ, फिलहाल मैं तुझसे सच बोलने को तड़प रहा हूँ।
2: क्या बात है।
1: मंसूबे गलत नहीं थे मेरे, मैं किसी को समझा नहीं पाया, इसीलिए आज खुद को खुद से अलग कर रहा हूँ।
2: क्या बात, अच्छा अच्छा।
1: खुद को उलझा लिया है मैंने पहेलियों में, अब सुलझने के लिए दिल तार तार कर रहा हूँ। मुझसे प्यार करने वालों मुझे माफ कर देना, मैं आखिरी दफा आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ।
2: क्या बात है, बहुत जबरदस्त है।
1: आखिरी शेर है कि नहीं रहा दम कि अब एक कदम और भी चल सकूं, ऐ जिंदगी मैं अपनी लाश को इधर से उधर कर रहा हूं।
0: क्या बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है इसको सुन के कि आपने ऐसा कुछ अपने से इंस्पायर्ड होके ये चीज लिखी है, ऐसा कुछ?
1: यस एग्जैक्टली।
0: ओके स्वाति जी, आपके पास आते हैं, क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक की तालियां या अकेले कमरे में बैठी कुछ बढ़िया सी लाइन?
4: हम सब कवियों का ये है कि हम एकांत जब होते हैं ना, तो हमारे पास भावनाओं का एक श्रृंखला बनते जाता है जिसे हम शब्द देते हैं। और जब हम वो शब्द देते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई सुने और सुनने के बाद उसको सार्थक कर दे, बस हमारी इतनी ही तृप्ति रहती है।
0: जैसे सर ने कहा था, बात चाहिए बस हमें, कुछ नहीं चाहिए। हाँ,
4: हमें उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हम जो अपने भावनाएं रात रात भर, कभी कभी महीनों महीनों हम जाके एक रचना पूरी कर पाते हैं, और जब हम चाहते हैं ना कि इसे कोई सुने ना, तो बस उसको सुन के वो सार्थक कर दे। बस इतनी सी इच्छा हमारे पास रहती है, तो बस
0: हम वाह करने के लिए तैयार हैं।
4: बिल्कुल
0: दीजिए रचना।
4: तो मैं ज्यादा संघर्ष लिखती हूँ, और मेरा भी अभी मतलब मैं बहुत तो सीख रही हूँ, लेकिन मुक्तक मेरा एक है, सुनिएगा। क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, प्रॉपर मैं बिहार से हूँ और यहाँ मैं छात्र हूँ, और कोई भी हो, छात्र हो, कोई भी अपने घर से दूर रह रहा है ना, तो ये वो संघर्ष कर रहा है।
0: बिल्कुल।
4: और उसे पता होता है कि एक दिन वो कुछ भी कर ले, उसे घर की तरफ लौटना ही है। तो उसी पे रचनाएं थी।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. घर के लिए जो बात कही ना आपने आखिर में कि हम सब भले ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमें अपने घर ही लौटना है. और मैंने
1: शाश्वत सच है,
0: बिल्कुल बिल्कुल. और मैंने किसी एक बहुत ही खूबसूरत शायर की कुछ ऐसी लाइन पढ़ी थी, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ,

0: सुमिता जी आपके पास आते हैं, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
1: देखिए, हर कवि या शायर जो भी है, सबको एकांत ही पसंद होता है. जो तालियों वाला माहौल है, वाहवाही वाला माहौल है, वो तो 2020 के बाद शुरू हुआ. लोग 2020 से पहले भी थे.
0: हाँ जी,
1: ये अच्छी बात है कि डिजिटली ये चीज आई और लोगों को, कई लोगों को पहचान मिली. हाँ, कई लोगों को उनका जो एकांत का लिखा हुआ है वो लोगों के सामने आया. लेकिन अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मुझे वाहवाही और तालियों से ज्यादा ये चाहिए होता है कि वाह स्मिता तूने क्या लिखा. वो मुझे बहुत, मतलब कुछ ऐसा लिख दो कि आपको लगे कि हाँ आपने कुछ ना अपने मन को संतुष्ट किया, तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है. ओपन मिक में भी हम जाते हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि कुछ चलन ऐसा हो गया है, क्योंकि कोई चीज जब अधिकता में हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू गिर जाती है. अब ऐसे अधिकता हो गई है कि वहाँ श्रोता नहीं होते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ सिर्फ कवि होते हैं. सबको जल्दी है कि हम अपना बोलें, एक दिन के चार चार ओपन मिक हो रहे हैं, तो उसमें ना कोई किसी को सुनता है, ना कोई किसी को परखता है, ना कोई किसी को कुछ बताता है कि भाई तुम अपने को ऐसे इम्प्रूव कर लो या ऐसे कर लो. तो मैं इसीलिए ओपन मिक बहुत कम जाती हूँ. मैं एक दिन का, जिस दिन जाऊंगी महीने में दो जाती हूँ, और आराम से सुन के आती हूँ 15-20 लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनना बहुत जरूरी
0: है. एग्जैक्टली,
1: है ना. कहना तो सबको आता है, कहते हैं कि लिखना कितना अच्छा है ये जरूरी नहीं है, आपको सुना किसने वो ज्यादा जरूरी है, है ना. आप लिख सकते हैं. तो अभी मैंने ना माँ पे, मैं आपको बता रही थी कुछ देर पहले कि मैंने अपनी माँ पे लिखी थी.
0: हाँ जी.
1: तो ये मन के भाव है जो उन्हें देख के आए थे.
0: हाँ जी.
1: और ये 80s और 90s की माओ को समर्पित है.

0: बचार अब जब ऐसी माओं से ना हम बेटियां जो आज बाहर निकल पाई हैं उनके सहने की वजह से, तो हम क्या सीखते, बस दो लाइन है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि मैं

0: हाँ है, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत रचना है आपकी। सीरियसली ऐसे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मुझे लगता है माँ दुनिया की एक ऐसी चीज है जो सुकून देती है ना
0: जी।
1: तो मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती मैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ती बहुत अच्छा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवियों को, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ा है, मजाज, फराज, फैज साहब, जॉनी लिया साहब, गालिब, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है उनकी रचनाओं से। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिख लेती हूँ। वैसे ही माँ के लिए लिखा था कि बहुत कुछ मिलता है जिंदगी में, पर है माँ तेरे आंचल जैसी खिली जन्नत नहीं मिलती।
0: वाह क्या बहुत खूबसूरत।
1: सर आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सवाल है, आपको क्या ज्यादा पसंद है?
2: मुझे ये पसंद है, हमने कोई चीज मान ली एकांत में लिखी हो, जो देश दुनिया से उठाई हो, उस पे अगर हमें वाह मिले तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो मंच हो, चाहे ओपन माइक हो,
0: बिल्कुल
2: ऐसी ही एक रचना मैं आपके सामने अगर इजाजत हो।
1: बिल्कुल सर।
2: एक पहले मुक्तक, फिर एक गजल आपके बीच। मुक्तक यूं कहे, ताजगी है हताशा नहीं है, जिंदगी है निराशा नहीं है, ये दिलो जान है शायरों की, शायरी है तमाशा नहीं।
0: क्या बात।
2: और एक गजल है, वैसे तो वो तरन्नुम में बहर में है, लेकिन मैं वैसे बहर में पढ़ता हूँ।
1: जी जी।
2: हमें नफरतों को मिटाना पड़ेगा, अमन चैन से दिल लगाना पड़ेगा, वो जिसने हमारे सभी ख्वाब लूटे उसे माफ करके दिखाना पड़ेगा।
0: क्या,
1: क्या बात है।
2: कि नफरत हमेशा अंधेरा करेगी, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
2: बड़ी मजहबों की दीवारें खड़ी हैं, उन्हें उल्फतों से गिराना पड़ेगा। और बेटियों के लिए शेर देख लें, सबक हौसलों का सिखा कर पढ़ा कर हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
2: और गजल का मकता यूं के, अगर चाहता है रहे प्यार जिंदा, तुझे जीत कर हार जाना पड़ेगा।
1: क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।

0: तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, लेकिन समय सीमा का ख्याल रखते हुए अब हमें शो की समाप्ति पर आना पड़ेगा। तो जाते जाते सबसे फिर एक और सवाल, सबसे यही सवाल कि कविता क्या है आपके लिए? अनिका जी आपसे पूछना चाहूंगी,
1: कविता क्या है? कविता माँ के लिए बनाया हुआ एक अच्छा खाना है जिसे बच्चों के आगे परोसा जाए तो वो तारीफ करें।
0: हाँ।
1: भक्त के लिए भक्ति है और मेरे जैसों के लिए तो आज की कह सकते हैं आप कि हम जो लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बस कि भगवान है हमारा, अगर उसे आप जैसे लोग सुन रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, तो सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास लिखने के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि रिश्ते नाते सब एक अलग चीज है, आपके पास जब आपकी कला है ना तो वो अलग चीज है
0: जी।
1: अगर वो सब होते तो शायद हम ये लिखते ही नहीं, हम लोगों के साथ अच्छे होते
0: जी।
1: जब कोई नहीं बचा, सब खोने के बाद ये मिली, तो ये तो सब कुछ ही है अभी फिलहाल, बाकी ज्यादा बेहतर जानते होंगे।
0: तो जाते जाते कोई और आपकी चंद लाइन जो आप यहाँ पर रखना चाहती
1: हैं? हाँ मैम, जरूर। तो चार लाइनों का एक किताब रख देती हूँ मैम, उस इंसान के लिए जिसकी वजह से आज मैं लिख रही हूँ।
0: अरे
2: हाँ
0: जी जी।
1: करके वादा मुकर गए तुम भी, बे इरादा मुकर गए तुम भी, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, उससे ज्यादा मुकर गए तुम भी।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया।
0: क्या बात है, वो सुन रहे होंगे वैसे ही। हाँ। हो सकता है।
1: बिल्कुल आज सुने
0: जी। आलोक जी आपके पास आते हैं, क्या है कविता आपके लिए?
3: अभी जो मैंने जवाब दिया था इस बात का, वो बदल जाएगा।
0: हाँ।
3: भी अगली बार मुझसे सवाल,
0: वैसे अभी भी बदल सकता है
3: अभी,
0: आप चाहें
3: इसलिए
0: तो।
3: नहीं कि जो मैंने जवाब दिया था कि शायरी मेरी मजबूरी है, वो मैं माशूका बनाऊंगा और उसका कारण मैं ढूंढूंगा, क्योंकि बिना कारण के किसी बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि अपनी ही बात में फंसना मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: तो चलिए अगली बार आपसे फिर मिलेंगे और ये जो जवाब है उसका हमें इंतजार रहेगा। तो जाते जाते आपकी कुछ और कोई रचना, कुछ लाइन्स?
3: जी मैं चार लाइनें पेश करता हूं।
0: बिल्कुल।
3: मेरी आंखों की गुलाबी नसें चीख रही थी, मेरी खाल से कोई मेरे रोंगटे खींच रहा था, मेरे आंसुओं को बहने की इजाजत नहीं थी, मुझे क्या बोलना था और मैं क्या बोल रहा था।
0: क्या बात है,
3: बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है स्वाति जी,
4: बिल्कुल।
0: क्या है कविता आपके लिए?
4: कविता मेरे लिए साधना है। हम कोई चीज को मतलब साधना में बदल देते हैं ना, तो हम जितना साधना करेंगे उसके करीब और जाएंगे।
0: मैं कहने वाली थी हंसी आपके लिए, क्योंकि जब से आप आई हैं और आपको कविता की जो कविता के नाम से जो स्माइल आ रही है आपके चेहरे पर।
4: मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं
0: जी,
4: तो मेरे लिए साधना ही है
0: जी, जी।
4: मैं जब भी बैठती हूँ कुछ लिखने तो वो एक साधना ही है, माँ भगवती की कृपा होती है तभी हम कुछ रच पाते हैं।
0: क्या बात है।
4: तो
0: कुछ कहना चाहेंगी और जाते हुए आप?
4: हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमें गिराते हैं, हम उठते हैं, कोई गिराने की कोशिश करता है, तो चार पंक्तियाँ उसी पे लिखी थी
0: जी जी।
4: गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, खुद को सही मुझे कितना गलत बता सकते हो। आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो। बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।

0: स्मिता जी आपके पास आते हैं जी, आप क्या कहेंगी, क्या है आपके लिए कविता?
1: मेरे लिए तो कविता जो है ना इस पूरी धरा का सबसे खूबसूरत राग है। वो राग जिसे जो अनसुने होते हैं ना वो कभी हृदय सुन लेते हैं। कभी शायद कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो अनसुने राग जो हम दुनिया को सुनाते हैं ना वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अभी जैसे स्वाति ने बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिराते हैं और फिर हम उठते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए कुछ ऐसा लिखा था, चार लाइनें सुना देती हूं, लंबी है कविता बट चार लाइनें, कि एक चींटी का रास्ता भी रोकते हैं व्यर्थ बैठे लोग, और आप सोचते हैं कि ये लोग तुम्हें बढ़ाएंगे, जो खुद चल नहीं पाए कभी वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, राहों पर कांटे बोने वाली फितरत हो जिनकी वो तुम्हारे सपनों के लिए क्या कालीन बिछाएंगे, और जो भावनाओं की ऊंचाई छू नहीं पाए कभी वो दूसरों के आसमान नापते हैं, जो उड़ने का हौसला भी जुटा नहीं पाए कभी वो तुम्हारे पंखों की थकान मापते हैं, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, ये वो धुंधले आईने हैं तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं, तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं।
0: बहुत प्यारा, चार लोग तो नहीं है
1: नहीं, क्योंकि जिसने मेहनत की होती है ना, और मेरा एक मानना है कि जो चीजों को लेके बहुत, जिनको हुनर होता है किसी भी चीज का, संगीत का, कविता रचने का, किसी भी चीज का, वो कभी किसी दूसरे का ना उन्मान नहीं माप सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी मेहनत करके अगर मैं यहाँ तक पहुंचो तो उसने कितनी मेहनत की होगी। तो निंदा रस वहाँ नहीं होता कहीं, जहाँ हुनर होता है वो वहाँ होता है, जहाँ व्यर्थ बैठे रहते हैं लोग।
0: एग्जैक्टली सर, आपके पास आते हैं जय सिंह जी, तो आपके लिए कविता क्या है?
2: कविता कवि का एक ऐसा संदेश है जिसे वो एक बार लिखकर अनंत श्रोताओं और पाठकों तक पहुंचा सकता है।
0: हाँ जी,
2: बस मेरी नजर में यही कविता है।
0: तो जाते जाते आपकी कुछ और लाइंस,
2: एक मुक्तक मैं सबके बीच रखता हूँ, एक आदर्श मुक्तक है। न होकर रंग बूतो गुल सिता में कुछ नहीं होता, मोहब्बत के बिना ऊंचे मकाम में कुछ नहीं होता, बहुत रंगीन है दुनिया बड़ी दिलकश नजारे हैं, मगर माँ बाप से बढ़कर जहाँ में कुछ नहीं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आप सभी से बात करके मुझे बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को रेडियो महारानी के स्टूडियो में आकर उतना ही मजा आया होगा, ये तो आप खुद बताएंगे जब आप इस शो को सुनेंगे। तो सबसे मैंने पूछ लिया है कविता क्या है, तो मैंने जैसे कहा मैं थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ, जब शुरुआत में कभी लिखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या लिखूं, क्योंकि बहुत नई थी लिखने में, कविताओं के लिए ही कागजों के लिए लिखा था और पूछा था कि क्या लिखूं मैं, मुझे तुम ही बता दो ना। तो मैंने लिखा था कि कह दूं तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इतिहास लिखूं, ऐ कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखूं।
3: अरे
0: तो बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो वेरी मच आप मेरे साथ जुड़े,
1: थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा
0: जी,
1: बहुत ही प्यारा लगा हमें
0: जी
1: यहाँ सो करके
0: जी। तो वक्त बदलता रहेगा लेकिन जो कविताएं हैं, जो नज़में हैं, जो हमारा लिटरेचर है वो ऐसे ही जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके। सपना हूँ मैं आपके साथ और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज मैं जिस स्टार की बात करने जा रही हूँ, उनके लिखे हुए गानों ने हिंदी सिनेमा के चांद को भी चमक दी। कुछ ऐसी जान डाल दी उन गानों में कि हर गाना कुछ कहने को बेताब हो उठा। वैसे तो प्रोफेशनली एक मैकेनिक थे और दिल्ली से बॉम्बे, जिसे आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं, पैसे कमाने आए थे। पर साहित्य से इतना ज्यादा लगाव था और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब से ये इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि सीधा पहुंच गए सिनेमा के मंच तक। तब से लेकर अब तक इन्होंने सिनेमा को हर जॉनरे के गाने दिए हैं। बच्चों से तो इतना ज्यादा लगाव था इन्हें कि इनके लिखे हुए गीत स्कूल की प्रेयर बन जाया करती थी। और लकड़ी की काठी का तो क्या ही कहना भाई, बच्चों का जो देश होता है ना, उसका तो ये नेशनल एंथम बन चुका है। वैसे आज मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि जो आज का दो घंटे का सफर हमारा और आपका है, ये बहुत ही शायराना रहने वाला है। और ये भी बता दूं आपको कि आज मैं स्टूडियो में बिल्कुल भी अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद रहेंगे, तो मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और ऐसी आवाज आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सफर को। लेकिन जब बात शायरी की हो और गीतों की हो, तो गानों से बेटर क्या हो सकता है आज की शुरुआत के लिए। तो शुरू करते हैं इस सफर को कुछ म्यूजिकल स्टाइल में।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

जिंदगी फॉर्मूला बन जाती तो बहुत बोर हो जाती, पर इसकी खूबसूरती तो यही है कि जिंदगी का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जो पंक्तियां अभी मैंने पढ़ी, ये मेरी लिखी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि है आज के हमारे स्टार की, यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा जी की। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये भला कौन है, तो सब्र कीजिए, बताती हूँ मैं आपको कि ये कालरा साहब कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने गुलजार साहब हैं, जिन्हें इनके ओरिजिनल नेम यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से कोई भी नहीं जानता, हर कोई सिर्फ गुलजार का ही तो दीवाना है। इनका जन्म 18 अगस्त 1934 में हुआ। ये सिर्फ एक उर्दू पोएट ही नहीं बल्कि एक लिरिसिस्ट, ऑथर, स्क्रीन राइटर और एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे इनके बारे में आपको बताऊं, इनके नाम के पीछे जो मिस्ट्री है ना, उसे सुलझा लेते हैं। और साथ ही आपको बताऊंगी कि इनके नाम में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनका जन्म हुआ था दीना गांव में, और वहां से पार्टीशन के बाद जब ये दिल्ली आए अपने पिताजी के साथ, तो यहां पर उन्होंने अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पर क्योंकि ये पढ़ने के बहुत शौकीन थे, इसलिए रात को ये तिलस्मी कहानियां लेकर आते थे और 3-4 कहानियां एक ही रात में पढ़ देते थे, और अगले दिन जाकर दुकानदार को वो बुक्स वापस करके नई किताबें लेकर आते थे। अब एक दिन दुकानदार ना जाने किस बात पर इतने नाराज थे कि उन्होंने इन्हें एक मोटी सी बुक दे दी कि ये पकड़ो, ये वाली बुक पढ़ो। ये थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पोइट्री बुक गार्डनर, विच वॉज अ ट्रांसलेटेड बुक ऑफ कोर्स। और इन्हें जब ये बुक मिली तो ये बच्चा इतना खुश हो गया और इसने पूरी शिद्दत से उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया, और यहीं से सफर शुरू हुआ साहित्य की तरफ इनका। और इसी साहित्य ने इन्हें एक और भाषा से भी मिलवाया, ये भाषा थी बंगाली, क्योंकि ट्रांसलेटेड बुक में भी कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनको ट्रांसलेट नहीं किया गया था। उन्हें जानने की इच्छा में इन्होंने बंगाली लैंग्वेज भी सीखी, और इसी लैंग्वेज और साहित्य ने आगे चलकर इन्हें एक नया तोहफा दिया। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी से इंस्पायर्ड इन्होंने जब शायरी करना शुरू की तो इन्हें अपना नाम बदलना था, क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक पेन नेम होता है, और क्योंकि ये मिर्जा गालिब को भी काफी ज्यादा पसंद करते थे, तो इन्होंने उनसे इंस्पायर्ड गुलजार शब्द का चयन किया, और साथ ही अपने नाम के आगे ये दीनवी भी लगाने लगे थे। ये अलग बात है कि लंबे सफर में दीनवी कहीं पीछे छूट गया और सिर्फ गुलजार आगे रह गया।

0: कुछ पुरानी यादें, पुराने किरदार आज के जमाने के लिए यादगार।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाँ।
0: वो एक कल जब बीते थे अपनों के संग कुछ पल,
3: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम,
0: जब इशारों में होती थी बातें, इंतजार में कटती थी।

0: सुनिए सिनेमा के कुछ यादगार रंग अपनों के संग शो रात बाकी बात बाकी में सपना के संग।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
0: शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आज के सिनेरियो में तो वो बिल्कुल फिट बैठता है। गाना है पैसा ये पैसा हाय पैसा कैसा पैसा, भाई पैसे के लिए तो लोग बिछड़ जाते हैं, ऐसा ही कुछ हमारे गुलजार साहब के साथ भी हुआ। उन्हें अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जाना पड़ा पैसा कमाने के लिए, और क्योंकि वो मैकेनिक थे इसलिए उन्हें वहां जाकर गाड़ियों को रंगने का काम मिल गया। पर जब तक गाड़ियों का रंग सूखता था, ये अपनी शायरी का रंग कागजों पर उतार दिया करते थे। और ऐसे ही चलते चलते इन्हें एक एसोसिएशन के बारे में पता चला। एसोसिएशन थी PWA यानी कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसको इन्होंने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। और वहीं इनकी मुलाकात हुई लिरिसिस्ट शैलेंद्र साहब से, जो 1962 में डायरेक्टर बिमल रॉय की एक फिल्म के लिए गाने लिख रहे थे और इन्ही गानों को कम्पोज कर रहे थे हमारे SD बर्मन साहब। पर एक गाने को लेकर शैलेंद्र और SD बर्मन साहब में कुछ खिटपिट हो गई, जिसकी वजह से शैलेंद्र ने गाने को लिखने से साफ इनकार कर दिया। पर हाँ, साथ ही उन्होंने गुलजार को SD बर्मन साहब के आगे इंट्रोड्यूस किया। पर फिल्म डायरेक्टर बिमल दा बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बात से, और वो गुलजार को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि बंदनी फिल्म जिसे वो डायरेक्ट कर रहे थे वो एक बंगाली नॉवल पर बेस्ड फिल्म थी। इसलिए बिमल रॉय चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स इस फिल्म के गीतों को लिखे जिसकी राइटिंग में बंगाली टच हो। और जब उनकी किसी बात का जवाब हमारे गुलजार साहब ने बंगाली में दिया, तब कहीं जाकर उन्हें गुलजार साहब पर कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने इस गाने को उनके हाथों में सौंप दिया। गाना बनकर तैयार हो गया, सबको बहुत पसंद आया, फिल्म हिट हो गई 1963 में, और साथ ही इस गाने को भी बहुत ज्यादा प्यार लोगों ने दिया। ये गाना था मेरा गोरा रंग ले लो मोहे शाम रंग दे दो, और इस गाने को लोगों ने भर भर के प्यार दिया। पर गीत के हिट होने के साथ ही गुलजार साहब ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी कि आज के बाद वो कोई भी गाना नहीं लिखेंगे। भाई ऐसा क्या हुआ कि गाना हिट होने के बाद भी उन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट की, ये भी आपको बताऊंगी। फिलहाल थोड़े से गीत सुन ही लेते हैं, उसके बाद आकर इस मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे। और ये गीत है गुलजार साहब का ही लिखा हुआ, जिसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पर पिक्चराइज किया गया था। AR रहमान साहब का म्यूजिक है और गाने के बोल हैं तेरे बिना बेसुआदी रतियां।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6। कुछ हटके सपना हूँ मैं आपके साथ, और आज हम बातें कर रहे हैं हमारे अपने गुलजार साहब की, जिन्होंने अपने करियर का पहला गीत लिखा और गीत लिखते ही हो गया हिट। लेकिन इसके बाद इन्होंने सबको चौंकाने वाली एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिससे हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई आज के बाद हम कोई गाना लिखेंगे ही नहीं। इस बात को लेकर बिमल रॉय बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और उन्होंने गुलजार को बिल्कुल ऐसे डांटा जैसे एक पिता अपने बेटे को डांटते हैं। उनके इस प्यार को देखते हुए गुलजार बिल्कुल उनके कायल हो गए, और जैसे एक बेटा अपने पिता की हर बात मानने लग जाता है, वैसे ही इन्होंने बिमल को फादर फिगर कंसिडर करते हुए उनकी हर बात को अपना लिया और उनके साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत सारी फिल्मों में जुड़े रहे, जिसमें पहली फिल्म थी काबुलीवाला जो कि 1961 में रिलीज हुई। ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ और सुजाता फिल्म से लेकर दो दुनी चार फिल्म तक बना रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके अंदर एक कलाकार छुपा हो तो वो कलाकार कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ऐसा ही गुलजार साहब के साथ भी हुआ। अब उन्होंने फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें आनंद, इजाजत और रात पश्मीने की का नाम शामिल है। उसके बाद इन्होंने एज डायरेक्टर अपने करियर की पहली फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था परिचय, और इस फिल्म में संजीव कुमार और विनोद खन्ना की गेस्ट अपीयरेंस थी, पर मेन लीड में थे जितेंद्र साहब, और इसी फिल्म से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पकड़ बनाई थी। न केवल जितेंद्र बल्कि कोशिश फिल्म से संजीव कुमार साहब के लिए भी इन्होंने कई दरवाजे खोल दिए थे, और इसी फिल्म के लिए संजीव कुमार को नेशनल अवार्ड भी मिला था। वैसे ये बता दूं मैं आपको कि इस फिल्म में जया भादुरी जी ने भी काम किया था और इन दोनों ने डेफ एंड डम का किरदार निभाया था, जिसकी वजह से ये फिल्म अलग ही सुर्खियां बटोर रही थी। पर अपने आइडल मिर्जा गालिब पर काम करना इनका बहुत बड़ा सपना था, पर फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें ऐसा कोई चेहरा नहीं मिल रहा था जिसे ये मिर्जा गालिब की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते। तभी इन्हें किसी ने एक खत लिखा और उसमें लिखा था कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि मैं होने वाला हूँ आपका मिर्जा गालिब। कौन था ये शख्स इसके बारे में भी बताऊंगी, पर फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक आप सभी का इंतजार कर रहा है।

सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रखो ख्याल। साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग से हो जाओ सावधान। डू योर पार्ट, बी साइबर स्मार्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली। और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना हूँ मैं आपके साथ। और आज रात बाकी बात बाकी में हम गुलजार साहब की बात कर रहे हैं। आज हम इतने बड़े शख्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे किसी को इनवाइट कर लेना चाहिए। आज स्टूडियो में मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो की एक मिमिक्री आर्टिस्ट है और इनका नाम है पार्थ। तो पार्थ, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
1: नमस्ते सपना जी, आज मैं गुलजार साहब की आवाज में आपको उन्हीं की एक कविता सुनाने वाला हूँ।
0: इरशाद।
1: तुझे पहचानूंगा कैसे, तुझे तो कभी देखा ही नहीं। ढूंढा करता हूँ तुझे अपने ही चेहरे में कहीं।
0: क्या बात।
1: लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी माँ सी हैं, यूं तो लबरेज हैं पानी से मगर प्यासी हैं। कान में एक छेद है, कान में एक छेद है, पैदाइशी आया होगा, तूने मन्नत के लिए कान छिदाया होगा। सामने दांतों के एक वक्फा है, तेरे भी होगा एक चक्कर, तेरे पांव तले भी होगा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: ना जाने किस जल्दी में थी, जन्म दिया और दौड़ गई। ना जाने किस जल्दी में थी, जन्म दिया और दौड़ गई। क्या खुदा देख लिया था जो मुझे छोड़ गई।
0: क्या बात।
1: तुझे पहचानूंगा कैसे, तुझे तो कभी देखा ही नहीं, तुझे तो कभी देखा ही नहीं।
0: बहुत खूब। आपने इतने प्यारे अंदाज में आज गुलजार साहब को हमारे सामने यहाँ रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पार्थ, बेसिकली चलिए हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जान लेते हैं, क्या करते हैं आप?
1: तो मैम, मैं पेशे से, वैसे तो मैं अभी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ के साथ ही एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को ओन करता हूँ, जिसमें मैं तरह तरह की वीडियो रिक्वायरमेंट्स और वीडियो एडिटिंग वगैरह इस सब का भी काम करता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप भी मल्टी टैलेंटेड हैं हमारे गुलजार साहब की तरह। और एक क्वालिटी तो आपने बताई नहीं कि आप भी इतनी प्यारी शायरी करते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ही बहुत सारी शायरी आपसे सुनते रहेंगे, क्योंकि गुलजार साहब ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया करते थे और अपनी राइटिंग में हमेशा उनके इमोशंस को शामिल किया करते थे। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि कौन थे वो शख्स जिन्होंने खत लिखकर साहब को कहा था कि इंतजार कीजिएगा मेरा, मैं होने वाला हूँ आपका मिर्जा गालिब। ये कोई और नहीं बल्कि नसीरुद्दीन शाह थे, जो उस वक्त FTII में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि गुलजार अपने एक टीवी सीरियल मिर्जा गालिब के लिए एक चेहरा ढूंढ रहे हैं। तो नसीरुद्दीन को लगा कि मैं ही हो सकता हूँ वो, मेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने तुरंत ही गुलजार को एक खत लिखा। अब ये अलग बात है कि ये खत कभी भी गुलजार तक पहुँचा ही नहीं, पर नसीरुद्दीन शाह की इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन थी कि आखिर में वही बने मिर्जा गालिब का चेहरा।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सारे शहर में आप सा कोई नहीं। वैसे आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, पूरे जहान में उन जैसा कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की, और आज मेरे साथ स्टूडियो में पार्थ मौजूद हैं, जो कि हमें गुलजार साहब की आवाज में उन्हीं की पोएट्री पढ़कर सुना रहे हैं। तो पार्थ, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं, और अभी ये दिल चाहता है गुलजार साहब को और ज्यादा सुनना। तो अब आप हमें उनकी कौन सी कविता सुनाने वाले हैं?
1: जी सपना जी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो कविता उन्होंने लिखी थी मेहंदी हसन साहब की याद में। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि आंखों का वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं होती, बंद आंखों से रोज चला जाता हूँ सरद पार में मिलने मेहंदी हसन से। सुना है उनकी आवाज को चोट लगी है, सुना है उनकी आवाज को चोट लगी है, और गजल खामोश है सामने बैठी हुई, कांप रहे हैं होंठ गजल के, लेकिन उन आंखों का लहजा बदला नहीं। जब कहते हैं सूख गए फूल किताबों में, यार फराज भी बिछड़ गए, अब शायद मिलेंगे ख्वाबों में, अब शायद मिलेंगे ख्वाबों में।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये बात तो सच है कि वो हमेशा से ही फराज साहब और मेहंदी हसन साहब से मिलना चाहते थे, पर उनका ये सपना पूरा ना हो सका, और उनकी मुलाकात से पहले ही मेहंदी हसन साहब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। खैर, इन दो लोगों के अलावा दो और ऐसे लोग थे जो उनके बहुत ज्यादा फेवरेट थे। एक थी उनकी बिटिया, जिन्हें वो प्यार से बॉस्की कहा करते थे, और एक थी उनकी वाइफ राखी जी, जिनसे वो बे इंतहा प्यार करते थे। पर ये शादी का रिश्ता करीबन एक डेढ़ साल ही चला, और बिटिया के जन्म के बाद ये दोनों अलग हो गए। पर बॉस्की की याद में इन्होंने इतनी सारी कहानियां लिखी, जैसे बॉस्की का पंचतंत्र, बॉस्की के कप्तान चाचा, बॉस्की का कौवानमा, बॉस्की की गिनती, बॉस्की की गप्पे, बॉस्की के धनवान, ऐसे ना जाने कितनी सारी कहानियां लिखी हैं। और साथ ही वो प्रेयर आपको याद है जो बचपन में आप अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये भी तो गुलजार साहब की कलम से निकली हुई एक प्रेयर है जो हम लोगों ने बचपन में दिल खोल कर गाई है। कई बच्चे आंखें बंद करके तो कई चोरी छुपे आंखें खोल कर भी इसे गाते थे। और वो वाला गाना जो नेशनल एंथम बन चुका था हम सब बच्चों का, लकड़ी की काठी। जी हाँ, ये गाना जिसे उर्मिला मतोंडकर पर फिल्माया गया था, इस गाने को भी हम सब ने कितना प्यार दिया। ये सभी गाने, ये सभी कहानियां सिर्फ गुलजार साहब की कलम से ही पॉसिबल हो पाई, क्योंकि वो बच्चों से बे इंतहा प्यार किया करते थे। वैसे प्यार की बात अगर है तो इनकी कलम से ना जाने कितने ऐसे गीत लिखे गए हैं जिन्होंने कई जनरेशन तक लोगों को सच्चा प्यार करना सिखाया।

0: किसी की आंख में हमको भी इंतजार दिखे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत कूल। थैंक यू सो मच पार, आपने हमें सच में गुलजार साहब की इतनी खूबसूरत शायरियां सुनाई कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ तो वो रूबरू बैठे हैं और उनसे डायरेक्ट मैं ये शायरी सुन रही हूँ।
0: शुक्रिया।
1: बहुत बहुत बढ़िया। चलिए तो वापस चलते हैं हम अपने ओरिजिनल गुलजार साहब की ओर, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया। उनके पहले ही गाने से उन्हें भर भर के इंडस्ट्री से अटेंशन मिलने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर वक्त उन्हें ये प्रेफरेंस दी जाती थी। बहुत सारे गानों के लिए उन्हें रिजेक्शंस भी फेस करनी पड़ी। जैसे उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे लेकर आर डी बर्मन साहब के साथ उनकी थोड़ी सी तूतू मैं हो चुकी थी। पंचम दा इस बात पर गुस्सा हुए कि वो कुछ भी लिख कर ला रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गाना बन जाएगा। ऐसे शब्द मेरे नहीं बल्कि पंचम दा ने कहे थे गुलजार साहब से, जब वो एक पेपर पर कुछ लाइंस लिखकर लेकर गए और उन लाइंस को पढ़कर पंचम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो पेपर साइड रख दिया। तभी आशा जी ने वो पेपर उठाया और अचानक ही वो उन लाइंस को गुनगुनाने लगी और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये गाना बनकर तैयार हो गया। ये गाना था इजाजत फिल्म का मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। और आज भी जब हम इस पर्टिकुलर गाने को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ही लाइफ से जुड़ा हुआ ये किस्सा है। खैर, ये सिर्फ एक गीत ऐसा नहीं था जिसे रिजेक्शन मिली हो, बल्कि बहुत सारे गीत ऐसे थे जिसे इंडस्ट्री में रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। इनमें से एक गाना था लकड़ी की काठी, जिसे शेखर कपूर ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि गुलजार साहब मैंने आपसे बच्चों के लिए गाना मांगा था, लेकिन ये आपने क्या लिख दिया, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ये क्या गाना है। लेकिन जब फिल्म की एक्ट्रेस शबाना आजमी का सपोर्ट मिला इस गाने को, तब कहीं जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। ऐसा एक और भी गाना था, 1983 में रिलीज हुई फिल्म जंगल बुक का टाइटल ट्रैक था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था इस बेसिस पर कि डायरेक्टर साहब को चड्डी पहन के फूल खिला ये वाली लाइन पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने गुलजार साहब से कहा कि हम ये गाना तो आपसे ले लेंगे, लेकिन आप इस लाइन को बदल दीजिए। पर गुलजार साहब ने कहा नहीं, ये लाइंस तो मैं नहीं बदलूंगा। और यकीन मानिए, आज भी ये गाना हमें इसलिए एक्सेप्टेड है क्योंकि इसमें यही वाली लाइन है जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। वैसे गाना तो आप समझ ही चुके हैं, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। और इसी के साथ वक्त चला है हमारे भी कुछ ट्रैक्स का। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए फिल्म सात खून माफ से इस खूबसूरत से ट्रैक को, जिसको अपनी आवाज दी है उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज जी ने। गाना है डार्लिंग और इसके लिरिक्स दिए हैं गुलजार साहब ने।

0: जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। वैसे आई एम श्योर हम जहां पर भी होंगे गुलजार साहब के गीत जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि ऐसी वर्सटाइल पर्सनालिटी सदियों में कभी एक बार जन्म लेती है। और आज हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई डिकेड्स तक अपना इम्प्रेशन छोड़ा। इसमें इन्होंने कई म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया, जिसमें आरडी बर्मन साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में इन दोनों की जोड़ी ने कुछ ऐसे गीत दिए हैं जो लोगों को आगे आने वाले भी कई सालों तक याद रहेंगे, जिसमें परिचय, आंधी, खुशबू और इजाजत जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। ना केवल पहले के बल्कि आज की अगर हम बात करें तो आज के भी बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ गुलजार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि एआर रहमान साहब, जिन्होंने उन्हें मोबाइल यूज करना सिखाया हो, या फिर विशाल भारद्वाज जी, जिन्होंने उन्हें माचिस, मकबूल और ओंकारा जैसी फिल्म के कुछ जादुई गाने लिखने पर मजबूर कर दिया हो। सचिन देव बर्मन साहब हो या फिर मदन मोहन, सलील चौधरी हो या शंकर जयकिशन, हर किसी के साथ गुलजार साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ गुलजार साहब की राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये त्रिवेणी फॉर्म ऑफ राइटिंग का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये थ्री लाइनर पोएट्री पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इनकी जो पोएट्री है वो परसेप्शन क्रिएट करती है, यानी कि जब भी आप इनकी पोएट्री सुनते हैं आप इमेजिन करते हैं आपके आंखों के आगे एक पिक्चर

0: और उर्दू लैंग्वेजेस का एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। वैसे आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास बन गया था, क्योंकि हमने बात ही एक खास इंसान की है, और देखते ही देखते ये 2 घंटे कहाँ खत्म हो गए पता ही नहीं चला, और वक्त हो चला है मेरा यहाँ से जाने का। पर इससे पहले कि मैं आप सबसे विदा लूँ, मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आज के हमारे गेस्ट पार्थ जी का, जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत कुछ पंक्तियां सुनाई, वो भी गुलजार साहब की। और जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्थ कि आप आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बहुत सारी शायरियां हमें सुनाई। जाते जाते भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें गुलजार साहब की एक शायरी जरूर सुनाएं।
1: थैंक यू सपना जी, आपने मुझे यहाँ पर स्टूडियो में अपने साथ बिठाया, इनवाइट किया। अब मैं आपको शायरी पढ़ के सुना देता हूँ।
2: किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों के ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जाते जाते इस जूनियर गुलजार साहब को सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। वैसे तो साहब की हर राइटिंग में आपको प्यार, दोस्ती और जिंदगी के ना जाने कितने फलसफों का रस मिलता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे भी ये रस हमें मिलता रहे। खैर, आज के दौर से भी वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ओ रोमियो फिल्म में भी उन्होंने मिलने और बिछड़ने की खूबसूरती को अपने कलम से कुछ इस तरह से दिखाया है कि हर कोई उनके लिखावट का एक बार फिर से फैन हो चुका है, और आज ही क्या बल्कि आने वाले ना जाने कितने सालों तक हम उनको उनकी राइटिंग के लिए याद करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। छोड़े जा रही हूँ आपको गुलजार साहब के कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, और अगली बार तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: कदी
1: कुड़ी मैनू कहती
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: राजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम हो भी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ, अब तुम बोलते रहो।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त

0: है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
1: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो। मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझे

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM
4: कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कटकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
1: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
2: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ही खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: नाना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

प्यार है।

0: जरा आप मुस्कुराइए,
1: जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्राइवेसी गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: छोड़ दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजा सरकार
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो,
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

रहे हैं कृष्ण वाणी। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन्हें समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आप ते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। देवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन। और अन अधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग